ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 8वीं तिथि, शक तदनुसार 29 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में

0: उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM 100.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले आरंभ कर रहे हैं इस मातृ वंदना से।

अभी आप सुन रहे थे सीमा अनिल सहगल की आवाज में ये भजन। लीजिए अब सुनते हैं नरेंद्र शर्मा की आवाज में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन में आज का विषय है हम क्यों बीच में फंसे, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्ता।

0: दूसरे का सिर फोड़ देता है, तब एक भला आदमी दूसरे के काम में धीरे से फूंकता है, बड़ा अपनापन दिखाकर सलाह देता है। क्यों बीच में पड़े, घर बैठे उलझन मोल क्यों लें? अगर बाजार के आम चौराहे पर दो चार आदमी चाकुओं से एक निरपराध की हत्या करते हैं तो सारी भीड़ अपनी आंखें चुरा कर इधर उधर खिसक जाती है और एक गूंज सी छोड़ जाती है, हम क्यों फंसें, क्या फायदा। ये तो हुई मारने पीटने की बात। एक समझदार आसानी से कारण बता देता है कि लोग डरते हैं कि कहीं उन्हीं पर चोट न हो जाए, और फिर पुलिस की गवाही का चक्कर, कोर्ट कचहरी, छूत की भयंकर बीमारी, वे जरा सी कठिनाई या संघर्ष से घबरा कर पीछे हट जाए, धीमे कंपन। लेकिन सवाल यह है कि ज्वालामुखी क्यों नहीं फूटता? सड़क पर घरों की नंगी तस्वीरें देखकर जब कोई मुस्कुराता है तो मेरी आंखों में।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। चिंतन में आज का विषय था हम क्यों बीच में फंसे, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

श्री रामचरितमानस की रचना के प्रारंभिक प्रसंगों में व्यास आदि श्रेष्ठ कवियों की वंदना करते हुए तुलसीदास ने रामायण के प्रणेता ऋषि वाल्मीकि के चरणों में सिर नवाया है। कहते हैं आदि कवि के रामायण खरदूषण सहित होने पर भी अत्यंत सुंदर और सर्वथा दोष रहित है। भक्त कवि ने फिर चार वेदों की वंदना की है जो भव सागर पार करने के लिए जलयान के समान है। साथ ही प्रणम्य है ब्रह्मा जिन्होंने भव सागर की रचना की, जिसमें से एक ओर अमृत चंद्रमा तथा कामधेनु जैसे जीवनदायी निकले तो दूसरी ओर मनुष्य रूपी विष तथा मदिरा। तुलसीदास को विश्वास है कि देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके ही उनके मनोरथ पूरे होंगे। सरस्वती देव नदी गंगा शिव पार्वती आदि के सम्मुख सिर नवाकर ही वो श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन कर सकेंगे। तभी उनकी भाषा तथा कविता का जो प्रभाव उन्होंने कहा

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। इसमें गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6:45 हुए हैं। डीजे प्रस्तुत है कृषि सामाई की। कृषि सामाई की में आज का विषय है खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरक उपयोग, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव।
1: आने वाला समय खरीफ फसलों का होगा, और खरीफ फसलों से अच्छा उत्पादन के लिए अच्छा प्रबंधन उपाय अभी से करना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है संतुलित उर्वरक उपयोग। संतुलित उर्वरक उपयोग से आशय किसान भाइयों, जो अनुशंसित मात्रा में है, जिस फसल के लिए जितनी खुराक है वह मृदा परीक्षण के आधार पर दी जाए और एक समन्वित प्रणाली होती है उसके माध्यम से पूर्ति की जाए। यहाँ किसान भाइयों ये बताना भी जरूरी है कि समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली फसल उत्पादन के लिए जो मुख्य कारक होते हैं उसमें सबसे पहले गोबर की खाद आता है, जिसको हम जीवांश खाद कहते हैं। गोबर की खाद हम नाडेप के माध्यम से दे सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। आजकल प्राकृतिक खेती का दौर चल रहा है तो घन जीवामृत के माध्यम से देते हैं। तो ये सारी फसलें के लिए जो आवश्यक होती हैं, सारे पोषक तत्व देती हैं, इसको फसल की बुवाई से पहले खेत की आखिरी जुताई के समय दी जाता है। लेकिन अभी आवश्यकता है ऐसी खादों का, आप सही तरह से उनको बना लें और ताकि वो आने वाले समय में आपको उपयोगी हो सके। दूसरा आता है हरी खाद। हरी खाद भी एक ऐसी खाद है जो जीवांश पदार्थ की मात्रा बहुत तेजी से जमीन में बनाती है और बढ़ाती है। आने वाले समय में कभी कभी वर्षा हो जाती है, आप देखते हैं, तो हरी खाद में जो सन है, ढेंचा है या उड़द मूंग है, इसका भी बीज आप फसल में डाल सकते हैं। तो खेत में डालेंगे तो 25-30 दिन की जब ये हरी खाद की फसल हो जाती है तो खेत में इसकी पलटाई कर दें। खेत में जब पलटाई कर देते हैं तो ये 25 से लेके 80 किलोग्राम तक प्रति हेक्टर नाइट्रोजन फिक्स करती है। और ये जैसे हमारी धान की फसल लगाएंगे या जो भी फसल लगाएंगे

उसमें प्रतिपूर्ति नाइट्रोजन की करने में बहुत सहायक होती है और मिट्टी की भौतिक दशा में बहुत अच्छा सुधार लाती है। तीसरी बात आती है किसान भाइयों, जब हमने ये दो उपाय कर लिए, जीवांश खाद दी, हरी खाद दी, अब आता है कि हमको जैव उर्वरक जो हमारे ऐसे हैं जो चाहे वो बैक्टीरिया हो या हमारी जो फफूंद है, जो मित्र हैं, लाभकारी हैं, जिसमें एजिटोबैक्टर है, एजोस्पोरिलियम है, ये अनाज वाली फसलों के लिए उपयोगी है, या ब्लू ग्रीन एल्गी है जो धान के लिए उपयोगी है, और साथ ही राइजोबियम है या फास्फोरस गोलक जीवाणु है, इसके टीके भी लगाए जाते हैं। तो ये बातें हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम बीजोपचार करते हैं, तो उस खेत में हमको जैव उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, या खेत की जुताई के समय भी किसान भाइयों हम ऐसे उर्वरकों का कुछ मात्रा में मिट्टी में मिला के बुरकाव कर सकते हैं, ताकि जैव उर्वरकों की पूर्ति जो वहाँ का माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बढ़ सके। फिर आती है कि रासायनिक उर्वरकों को हम देना है, जब हम ये सारा समन्वित करते हैं तो रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता हमारी 50% तक कम की जा सकती है, और वो 50% से हमारी फसल की उत्पादन की लागत भी कम होगी। तो हम रासायनिक उर्वरक जब देते हैं, चाहे अनाज वाली फसल हो या दाल वाली फसल, अनाज वाली फसलों में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश देते हैं, जिसमें फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा नाइट्रोजन की दो भागों में या तीन भागों में मात्रा दी जाती है। खासतौर से खरीफ में अब धान की जब बोनी की जाती है तो नाइट्रोजन को दो या तीन भागों में स्प्लिट डोज में दी जाता है, लेकिन जब मूंगफली है, सोयाबीन है, उड़द है, या जो ऐसी फसलें दलहन परिवार से तालमेल रखती है, उनके लिए हम एक ही बार में देते हैं, तो उसमें संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन की ये प्रणाली अपनाते हैं, तो बहुत कम मात्रा में रासायनिक खादों की आवश्यकता होती है, और रासायनिक उर्वरक महंगे भी होते हैं, पर्यावरण के लिए अति ज़्यादा देने से नुकसान भी होता है, जमीन का भी दुष्प्रभाव छोड़ते हैं, तो संतुलित मात्रा में, अनुशंसित मात्रा में देने की उपाय करना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली कहलाती है। अब किसान भाइयों बात आती है, जो हम फसल लगाने जा रहे हैं, यदि हम दलहनी परिवार की लगा रहे हैं, तो हम उसके लिए दलहनी परिवार के लिए जो राइजोबियम है या जो एजिटोबैक्टर है अनाज वाली फसलों के लिए, उसको अभी से व्यवस्था करें और उसको छाया में रखें, कभी भी इसको धूप में नहीं रखना चाहिए। और जब हम जैसे जो खाद बनाते हैं उसको भी खुली मात्रा में ना छोड़ें और उसको छाया में रखें। जब बीज उपचार करेंगे तो बीज उपचार की प्रक्रिया में राइजोबियम का उपयोग करें, फिर उसके बाद आप फफूंदनाशक से उपचार करें। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आने वाले खरीफ में आप समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संतुलित उर्वरक उपयोग कर सकते हैं, अपनी फसलों की लागत कम कर सकते हैं, पर्यावरण को और मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा

अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की इसमें विषय था खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरक उपयोग, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र एफ एम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के तहत सुनिए इस सभा के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां।

अब से कुछ ही देर में यानी 7:05 पर आप सुन सकते हैं लघु वार्ता। लघु वार्ता में विषय होगा सांप्रदायिक सद्भाव। 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से। 7:20 पर आप सुनेंगे हिंदी वार्ता। विषय होगा आषाढ़ के पहले बादल और इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर शुभा वार्ष्णेय। 7:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

7:45 पर आप सुन सकते हैं सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 9:00 आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग और इसमें कलाकार होंगे।

9:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 10 बजे आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी हमारे भोपाल केंद्र से।

10:05 पर आप सुन सकते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और इसमें गायक कलाकार होंगे चांद शुभ्री। 10:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम और 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से।

0: कार्यक्रम विवरण अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी देर में
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारतपरं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिंद महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायी अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस् देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीनचन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस् वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षि अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडीनगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षि अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्करसमूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानाम् आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्यपरिवारकल्याणमन्त्री जगत्प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीयस्वास्थ्यपरिवारकल्याणपरिषदः 16 सम्मेलने समग्रशिशुबालस्वास्थ्यकार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्रीनड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालनमार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनिमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनिमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस् देशस्य एथेन्स् नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकम् आर्थिकसहकार्यञ्च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीयसम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक

0: में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स की सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय 7:05 हुए हैं। लीजिए आप प्रस्तुत है लघु वार्ता। लघु वार्ता में आज का विषय है सांप्रदायिक सद्भाव। श्रोताओं, हमारा देश भारत विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों, संस्कारों, रीति रिवाजों का देश है। विभिन्नताओं में एकता यहाँ की प्रमुख विशेषता है। हमारे देश भारत में जगह जगह विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं, भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं और रीति रिवाज हैं। इतनी विभिन्नताओं के होने के बावजूद हम सब मिलकर रहते हैं, आपसी भाईचारे की भावना से रहते हैं। यही हमारी ताकत है, यही इस देश की पहचान है। और यह ताकत हमारी आज की नहीं वरन सदियों से चली आ रही है। विभिन्न अवसरों पर कुछ

विभिन्न अवसरों पर कुछ विदेशी ताकतों ने हमारी इस संस्कृति को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो सफल ना हो सके। श्रोताओं, हमें इसी भाईचारे की भावना के साथ रहना है और भारत देश को आगे बढ़ाना है। हमारे देश की ताकत एक साथ मिलकर रहने में ही है। विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न जातियों के सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर जो आपसी भाईचारे की मिसाल हम भारतवासियों ने समय समय पर दिखाई है, वो अद्भुत है। ऐसी मिसाल शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में मिलती होगी। लेकिन श्रोताओं, बीच बीच में कुछ असामाजिक तत्व हमारी इस एकता में फूट डालने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि हम भाईचारे की भावना को छोड़कर आपसी मतभेद और मनभेद पैदा करें, और इस तरह से वो हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्रोताओं, इस वक्त हमें अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है और किसी भी प्रकार के बहकावों में ना आने की जरूरत है।

हमें यह याद रखना है कि ये देश गांधी जी का देश है, अहिंसा का देश है और अहिंसा हमारा परम धर्म है। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि हम सब इन बातों पर विशेष विचार करेंगे और अपने देश को मजबूत बनाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। श्रोताओं, आज की लघु वार्ता अब यहीं समाप्त होती है।

अभी आप सुन रहे थे लघुवार्ता। लघुवार्ता में आज का विषय था सांप्रदायिक सद्भाव। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स ने दिया सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। सेशल्स यात्रा के दौरान भारत ने की 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नीमच और शाजापुर में करेंगे सौर ऊर्जा पार्कों का उद्घाटन। और भारतीय महिला क्रिकेट T20 टीम विश्व कप से बाहर, और पुरुष टीम आयरलैंड से T20 सीरीज हारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रदान किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी ने पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की सरकार और जनता का धन्यवाद देते हुए यह सम्मान जलवायु परिवर्तन से लड़ रहे सभी देशों को समर्पित किया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री श्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार और सियोल शांति पुरस्कार मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान भारत और सेशल्स ने स्वास्थ्य, शिक्षा, अक्षय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री श्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के बीच विक्टोरिया में हुई वार्ता में भारत ने सेशल्स को 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया जाएगा, जो प्रदेश की पहली सोलर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करीब 1593 करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू को बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ की लागत से कुकरू, चिखलदरा, मुक्तागिरी और मेलघाट को जोड़ते हुए एकीकृत टूरिज्म सर्किट विकसित

0: किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुकरू में योगाभ्यास किया और पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ भी किया।
1: पानी को लेकर मैंने कुछ निर्णय किए हैं। ग्राम पंचायत कुकरू में राशि 4,14,00,000 की लागत से तालाब का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम कसई में तालाब निर्माण का सर्वे उपरांत जो खर्चा लगेगा हम देंगे। ग्राम जामुखेड़ा में रोड निर्माण के लिए 70,00,000, ग्राम लोकल दरी में पुलिया निर्माण 40,00,000, ग्राम कसई भेड़िया कुंड में 85,00,000, ग्राम खामला में बालिका छात्रावास निर्माण 1,20,00,000, मतलब 120,00,000 की ये छात्रावास की मंजूरी दी है।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट में प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के। मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही, इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगेगा और इसका उपयोग अगर ढंग से हो गया तो गांव की जरूरत के बुनियादी जरूरतों के सारे काम हम इससे पूरा कर दें। योजना अधिसूचित हो गई, रूल्स बनाने में सहयोग मिला है और लगभग एक आध राज्य शायद अपवाद हो तो हो, नहीं तो सब राज्यों ने बजट में प्रावधान कर दिया है अपने हिस्से का।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल खरगोन के झिरनिया में आयोजित सिकल सेल शिविर में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और प्रधानमंत्री जनमन योजना जनजाति क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। उन्होंने कार्यक्रम में ब्लड बैंक का शुभारंभ किया और 2 एम्बुलेंस तथा 1 शव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। स्वच्छ भारत अभियान को नई दिशा देते हुए खरगोन नगर पालिका ने धार्मिक आस्था, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम प्रस्तुत किया है। नगर पालिका शहर के मंदिरों से प्रतिदिन फूल एकत्रित करके फूलों की अगरबत्ती बना रही है। इस खास अभियान की और जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
4: शहर के मंदिरों से निकलने वाले फूल अब कचरा नहीं बन रहे बल्कि उन्हीं फूलों से सुगंधित अगरबत्तियां तैयार की जा रही। नगर पालिका ने शहर के 50 से अधिक मंदिरों से प्रतिदिन करीब 5 क्विंटल फूल एकत्रित करने की व्यवस्था की है। इसके लिए विशेष वाहन लगाए गए जो फूलों को संग्रहित कर अगरबत्ती निर्माण केंद्र तक पहुंचाते हैं। तैयार की गई अगरबत्तियों को कुंदा नाम दिया गया है और उन्हें मंदिरों में निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। नगर पालिका का यह नवाचार स्वच्छ भारत अभियान की भावना को मजबूत करते हुए कचरे के पुनः चक्रण और पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। अनुकूलनीय पहल को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते।
5: शहर में लगभग 50 से 60 मंदिर हैं, जिनमें कम से कम दिन भर में 5 क्विंटल से अधिक फूल संग्रहण होता है। उनको हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करके हम टेंशन ग्राउंड पे हमारा जो मशीन रखी हुई है वहाँ ले जाते हैं, वहाँ सेग्रीगेट करके उसकी सफाई करके पाउडर बनाया जाता है, सुगंधित अगरबत्ती तैयार की जा रही है।
4: खरगोन नगर पालिका की यह पहल अन्य शहरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
0: केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना में दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल से जुड़ी विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने प्रेजेंटेशन के जरिए कूनो नदी पुनर्जीवन परियोजना, समृद्धि केंद्र और कार्डियक एम्बुलेंस सेवा जैसी योजनाओं की जानकारी दी। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल झाबुआ जिला चिकित्सालय से बच्चों को पोलियो रोधक दवा की 2 बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की। झाबुआ जिले में 2,13,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने के लिए 1,100 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही इंदौर, सागर, नीमच, देवास, जबलपुर, खंडवा और मंदसौर सहित प्रदेश के सभी जिलों में भी इस अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रदेश की 4 पारंपरिक कृषि उपजों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैंगनी अरहर और छत्री धान को GI टैग मिल गया है। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने बताया कि इससे उन उत्पादों को देश विदेश के बाजारों में नई पहचान, कानूनी संरक्षण और बेहतर कीमत मिलेगी। ये चारों उपज मुख्य रूप से डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट और शहडोल जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र महाकौशल के क्षेत्र में उगाई जाती है।

प्रदेश में 19 मार्च से शुरू हुए जलगंगा संवर्धन अभियान का कल समापन होगा। समापन के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति रहेगी। अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और नदी पुनर्जीवन से जुड़े 3.5 लाख से ज्यादा कार्य पूरे किए गए हैं। कल हर ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा जाएगा और उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों तथा संगठनों को सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में आज भारी बारिश का अलर्ट है। यहां 24 घंटे में 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अब रुक करते हैं खेल का। आईसीसी महिला 20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स में ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर 172 रन बना लिए। वहीं आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत को कल T20 सीरीज में हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा की 7 शासकीय ITI संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 30 जून है। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पिपलिया मंडी में 1,77,00,000 की लागत से 32 कैश काउंटर दुकानों और ग्राम गुड़बेली छोटी में सड़क का भूमि पूजन किया। डिंडौरी जिले को HPV टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। इंदौर में 45 दिवसीय शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का आवासीय प्रशिक्षण शिविर का कल समापन किया गया और धार वन मंडल के अंतर्गत वन मंडल स्तरीय रूट शूट वृक्षारोपण तकनीक प्रशिक्षण का कल आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर।

0: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी वार्ता। हिंदी वार्ता में आज का विषय है आषाढ़ के पहले बादल, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शुभा वार्ष्णेय।
1: पेड़ परिंदे, सड़कें बादल, जो गर्मी से बेहाल थे कल, सबके ऊपर मेहरबान हुए आज घटाएं और बादल। छम छम दहलीज पर आई आषाढ़ की पहली बारिश, राहत की बौछार लाई मौसम की पहली बारिश। विक्रम संवत के अनुसार आषाढ़ का महीना चौथा महीना होता है। आषाढ़ का महीना ईश्वर की पूजा और समर्पण का महीना होता है। ये संधि काल का महीना है। आषाढ़ में ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। यह 4 महीने की अवधि है, जो कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलती है। आम बोलचाल में इसे चौमासा कहते हैं। यही समय वर्षा ऋतु का है। वर्षा आषाढ़, श्रावण तथा भादव मास में विशेष रूप से होती है। भारत में बरसात का मौसम जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के आगमन के साथ शुरू होता है। वर्षा ऋतु के आगमन का संदेश लेकर उपस्थित होता है आषाढ़ का महीना। आषाढ़ के बादल जड़ चेतन अचेतन संपूर्ण प्राणियों के जीवन पर अपना प्रभाव डालते हुए आकाश में छा जाते हैं। जेठ की गर्मी से तपती वसुंधरा का नन्नी नन्नी बूंदों से अभिषेक करते हुए आषाढ़ के आगमन के साथ ही प्रकृति का रंग भी बदल जाता है। प्रकृति हरी हो उठती है। पेड़ पौधे आँखों के ठंडक देने लगते हैं। बदलाव के इस मोहक सौंदर्य ने कवि और कलाकारों को सदैव अपनी ओर आकर्षित किया है। आषाढ़ के बादलों पर कई सारे कवियों ने अपनी लेखनी चलाई है। सर्वप्रथम तो खंड काव्यों की रत्न पेटिका में विराजित कौस्तुभ मणि जैसे मेघदूत कालिदास की इस रचना का काव्यानंद यानी स्वर्ग का सुमधुर यक्षगान ही समझिए। ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास ने अपनी

प्रसिद्ध खंडकाव्य मेघदूत को आषाढ़ मास के प्रथम दिन रामगिरी पर्वत पर लिखना प्रारंभ किया। उनके इस काव्य के दूसरे ही श्लोक में तीन शब्द आए हैं, वे हैं आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। आषाढ़ के प्रथम दिन कालिदास ने जब आसमान में संचार करने वाले काले कृष्ण मेघ देखे, तब उन्होंने अद्भुत कल्पना विलास का एक काव्य में रूपांतरित किया। यही है उनकी अनन्य कृति मेघदूत। संपूर्ण साहित्य जगत में वर्षा ऋतु आते ही कवियों का मन मयूर बनकर नृत्य करने लगता है। उसको उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। ऐसे में रीतिकाल के प्रेम मार्गी सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध बारह मासा सहज ही स्मरण हो आता है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह दुंद दल बाजा, सावन बरस मेह अति पानी, मरण परी हों विरह झुरानी। आषाढ़ का महीना मानव जीवन से लेकर कृषि जगत तक के जीवन में बदलाव की नई शुरुआत का प्रतीक है। विद्यालय से लेकर खेत तक आषाढ़ में ही खुलते हैं। यदि यह कहा जाए कि आषाढ़ का महीना हमारे अन्नदाताओं के लिए एक उत्सव है, आषाढ़ की बूंदों का असली स्वागत तो किसान ही करता है। इसी समय धान की बुआई होती है, अतः किसान समाज बड़ी आतुरता के साथ आसमान में काले बादलों की प्रतीक्षा करता है और रिमझिम बरसते मेघों में भीगते हुए किसान का पूरा परिवार धान की रुपाई में समर्पित होता है। धान रोपाई के एक सुंदर गीत की उमंग को अनुभूत किया जा सकता है। रिमझिम बरसत पनिया, आवा चली धान रोपे धनिया, लहरत बा तलवा में पनिया, आवा चली धान रोपे धनिया। रिमझिम फुहारों के साथ ही कजरी गायन आरंभ हो जाता है। मस्त मगन किसान कजरी गाकर प्रकृति को मनाते हैं। हरी भरी निखरी प्रकृति का आनंद स्त्री पुरुष सभी को अंदर तक भिगो देता है। झूला हिंडोला कजरी की ताने घर घर में गूंजने लगती हैं। हरी हरी भीजे चूनर मोरी धानी, बरस रहे पानी रे हारी, बादर गरजे चमके बिजुरिया रामा, नहीं आए सैया मोरा तरसे उमरिया रामा। हिंदी साहित्य में बादलों को लेकर जितनी कविताएं निराला ने लिखी हैं, उतनी किसी अन्य कवि ने नहीं, इसलिए उन्हें बादलों का कवि कहा जाता है। उनकी मशहूर कविता बादल राग 6 खंडों में विभाजित है। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए, लक्ष्मीन देख मोर मन घर मन्नर मन घर नाचत, बारद पेखी ग्रह वीर तीरत हरस जस विष्णु भगत कहूँ देखी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक ऐसी अद्भुत चौपाई कही जिसमें तुलसी के जन कवित्व की झलक मिलती है। गूढ़ गंभीर नीति और दर्शन के रूप बांधने वाले महाकवि तुलसी की विहम दृष्टि धरती पुत्र किसान पर पड़ जाती है। वे लिखते हैं, तुलसी कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजही मोह मद माना। कवियों के साथ साथ हम गीतकारों की बात करें तो हिंदी सिनेमा जगत में भी बारिश व बादलों पर कई सुप्रसिद्ध गाने बने हैं जो आज भी संगीत जगत में अमर हैं, जिनमें नील गगन पर उड़ते बादल, आ आ आ धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया, अल्लाह मेघ दे मेघ दे मेघ दे पानी दे पानी दे गुड़धानी दे, बदली से निकला है चांद और कारे कारे बादरा, उजारे कारे बादरा मोरी अटरिया ना शोर मचा, काले मेघा पानी तो बरसा जैसे गाने आज भी कानों को सुनने में अच्छे लगते हैं। आगे और साहित्य जगत में बादल व आषाढ़ मास की बात करते हैं तो लगभग 600 वर्ष पूर्व के आदिकाल या वीरगाथा काल में कहीं रासो है तो कहीं वेली।

0: आषाढ़ का वर्णन आदिकाल के दो ग्रंथों कृष्ण रुक्मणी ऋवेरी और दूसरा बीसल देवरासों में भी हुआ है। यही वह स्थल है जहां आषाढ़ के पहले मेघ का वर्णन है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जेठ की दावाग्नि सा ताप विरह की आग से मिलकर जैसे आषाढ़ की प्रिया का आह्वान करता है। कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, घनानंद, मलिक मोहम्मद जायसी आदि सभी ने विरह में दग्ध प्रियाओं ईश जीवों के प्रसंग में ही मेघों का स्मरण किया है। यह प्राकृतिक भी है, ग्रीष्म के बाद ही तो मेघों की अभिप्सा होगी। कहा भी गया है, जितनी उत्कट प्यास होगी उतना ही मीठा जल लगेगा। घनानंद ने कवि कालिदास की भांति ही मेघ को दूत बनाया और कहा, पर काजही देह को धारी फिरों पर जन्य जथारत हुए दरसो कभौ वा विसासी सुजान के आंगन में असुवा नहीं ले बरसो। बादल हमेशा से मानव मन को कल्पनाओं की उड़ान देते रहे हैं और काव्य में उनके विविध रूपों और भूमिकाओं का वर्णन होता रहा है। इसमें बाबा नागार्जुन की बादल को घिरते देखा, प्रेम पत्र कुंचित केश, दूर पास के संबंधों का कोई और न छोर, फिर कागज को छूती है हंसकर निब की कोर। अवध में एक लोकगीत बहुत प्रसिद्ध है जो कि आषाढ़ में व्याकुल माता कौशल्या के आतुर नयनों की यह वर्णन हृदयंगम करने वाला है। आषाढ़ मास घन गरजत घोर, रटत पपीहा कुहकत मोर, खड़ी कौशल्या अवधपुर धाम, लखन सियाराम खड़े तरवर तर, सावन में बरसे घन नीर, कैसे धरें कौशल्या धीर, कैसे धरें कौशल्या धीर। आषाढ़ ने वक्त पर दस्तक देकर जो उम्मीद बंधाई है, उम्मीद है वो बरकरार रहेगी। वैसे भी हम उम्मीदों के आसमान पर भरोसा करते हैं, इसलिए यह भी उम्मीद रखते हैं कि आगाज तो अच्छा है, अंजाम भी अच्छा होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता आषाढ़ के पहले बादल। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्य।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आप सुन रहे थे, फिल्म इज्जत से। इसमें आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत लिखा था साहिल लुधियानवी ने और संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म इजाजत से। इसमें आवाजें आवाज थी आशा भोसले की और गीत लिखा था गुलजार ने, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म माया से। इसमें आवाज़ें थी लता मंगेशकर की और मोहम्मद रफ़ी की। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिव।

कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो मित्र छवि की तरफ से नमस्कार। श्रोताओं, इस जगत में सभी पदार्थ, सभी जीव ऊर्जा से ही चल रहे हैं, लेकिन मानव एक ऐसा जीव है जिसे न केवल शारीरिक शक्ति वरन आत्मिक शक्ति या कह सकते हैं आध्यात्मिक शक्ति की भी जरूरत होती है। श्रोताओं, बाहरी शक्ति तो हम अन्य जल से प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति को पाने के लिए हमें ईश्वर से ही प्रार्थना करनी पड़ती है। प्रार्थना से ही हमारा मनोबल, हमारा आत्मबल बढ़ता है और जीवन रूपी इस संघर्षमय संसार में हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। तो आइए श्रोताओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत हम इस प्रार्थना से करते हैं।

लीजिए श्रोताओं, अब चलते हैं समाचारों की ओर। सावित्री बाई योजना से महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। जी हां श्रोताओं, अजा वर्ग की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सावित्री बाई स्वसहायता समूह योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत समूह गठन कर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। शासकीय आईटीआई में सत्र 2026-27 के प्रवेश में ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी DSDMP ऑनलाइन पोर्टल पर 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं।

अब अगली सूचना है, मध्य प्रदेश शासन ने किसानों के हित में सूचनादाता प्रोत्साहन योजना लागू की है। इसके तहत खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, मिलावट या यूरिया के अवैध औद्योगिक उपयोग की गुप्त सूचना देने वाले को 1,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। शिकायत सीएम किसान हेल्पलाइन 155253 पर की जा सकती है। यह योजना 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी।

श्रोताओं, पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ हो चुका है। पहले दिन 92,000 बच्चों को पिलाई गई दवा। राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत संचालित आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान में एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश का नया सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक शिक्षक 22 जून तक ऑनलाइन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 11वीं में सीधे प्रवेश के लिए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को अब अपनी उपस्थिति के लिए ई अटेंडेंस लगानी होगी। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं जो 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एल्डर लाइन 14567 वरिष्ठ नागरिकों के लिए मददगार साबित हो रही है। हेल्पलाइन के जरिए बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह, कानूनी सहायता और भावनात्मक परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। दुर्व्यवहार की शिकायत एवं आपातकालीन सहायता में भी यह सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्रोताओं, सूचना अब यहीं समाप्त होती है और अब इस कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनु

0: नमस्कार शिवपुरी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
2: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
3: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय

0: जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
3: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
4: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
5: सदियों पुरानी

0: वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
2: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच पहाड़ी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371 7117 0112371 7106 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू, कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाई।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत अभी आपने सुना फिल्म विश्वात्मा से। इसमें आवाज थी साधना सरगम की और संगीत दिया था विजू शाह ने और गीतकार थे आनंद बख्शी। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है जिनके नाम हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, छावेंद्र कुमार वर्मा। और ये पत्र हमें आया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं अगला फरमाइशी गीत।

कार्यक्रम का ये फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म आपकी कसम से। इसमें आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की थी जिनके नाम हैं गरीब नवाज कॉलोनी से पूजा, बबीता, शोभा, रेखा, रघुवंशी, स्वाति चौधरी, परी, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक, नारायण, भाऊ खर्चे। और ये पत्र हमें आया है वंदना नगर एयरपोर्ट रोड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से। लीजिए श्रोताओं सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम का ये फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म चमत्कार से। इसमें आवाज़ें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था अनु मलिक ने। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की थी, जिनके नाम हैं नीलम बत्ता, मुकेश बत्ता, नीतन।

नितिन पालक, करण गीतू और निहारिका वंश बत्ता। और ये पत्र हमें आया है कनेरा मोहल्ला पटियाला से। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं अगला फरमाइशी गीत।

कार्यक्रम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म दाग दी फायर से। इसमें आवाज़ें थी कुमार सानू की और अनुराधा पोडवाल की। गीत लिखा था समीर ने और संगीत से संवारा था राजेश रोशन ने। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की थी, जिनके नाम हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक, मीका बीरक। और ये पत्र हमें आया है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। और इसी गीत की फरमाइश हमारे एक और श्रोताओं ने की है, जिनके नाम है राधिका गजबजिए, राष्ट्रपाल गजबजिए, बेबी अनिष्का तन्मय गजबजिए। और ये पत्र हमें आया है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से। तो लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी फरमाइशी गीत।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म तुम बिन से, इसमें आवाजें थी उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल की। गीत लिखा था फैज अनवर ने और संगीत दिया था निखिल विनय ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का आपकी फरमाइश का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र FM 100.2 MHz पर इस समय सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग। लोक रंग के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजेश कुशवाहा और नीतू श्रीवास्तव के गाए ये लोकगीत। तो लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं ये पहला लोकगीत।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: अभी आप सुन रहे थे राजेश कुशवाहा की आवाज में ये लोकगीत। लीजिए आप सुनते हैं नीतू श्रीवास्तव की

अभी आप सुन रहे थे नीतू श्रीवास्तव के ये लोकगीत। इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। नीचे प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म सत्ते पे सत्ता से। इसमें आवाज़ थी किशोर कुमार की और संगीत से संवारा था आरडी बर्मन ने। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की थी, जिनके नाम हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। और ये पत्र हमें आया है छत्रपति संभाजी नगर से। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत।

कार्यक्रम का ये फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म राजकुमार से। इसमें आवाजें थीं मोहम्मद रफ़ी की, गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की थी जिनके नाम हैं शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी और स्वाति चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिके खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। और ये पत्र हमें आया है एरोड्रम थाने के पास वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से। लेटेस्ट होता हूँ, सुनते हैं अगला फरमाइशी गीत।

कार्यक्रम का ये फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म द ट्रेन से। इसमें आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की थी, जिनके नाम हैं डूमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर और ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। और ये पत्र में आया है महादेव घाट अमलेश्वर से। इसी गीत की फरमाइश हमारे एक और श्रोताओं ने की है, जिनके नाम हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जीतेक बीरक, मीका बीरक। और ये पत्र में आया है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं अगला फरमाइशी गीत।

कार्यक्रम का ये फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म जवानी दीवानी से। इसमें आवाज़ें थीं किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की थी जिनके नाम हैं पूजा, बबीता, शोभा, रेखा रघुवंशी और स्वाति, प्रयाग चौधरी, परी, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक, नारायण, भाव खर्चे। और ये पत्र में आया है वंदना नगर एयरपोर्ट रोड इंदौर मध्य प्रदेश से। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइश।

0: कार्यक्रम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म शर्मीली से। इसमें आवाज़ थी किशोर कुमार की और गीत लिखा था नीरज ने, संगीत दिया था SD बर्मन ने। सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।
1: तो हम चल

0: कार्यक्रम का आखिरी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म आन मिलो सजना से। इसमें आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। इस गीत की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता थे राजा राम धाकड़, डॉक्टर विक्रम धाकड़ और नरोत्तम धाकड़। और ये पत्र हमें आया है ग्राम सुभाषपुरा से। इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र FM 100।
1: अशोकनगर जिले की चिट्ठी, आलेख नीरज कुमार शुक्ल का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी, आलेख नीरज कुमार शुक्ल का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। अशोकनगर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात प्रशासन और सहकारिता की। जिले में बीते दिनों राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के नवनियुक्त प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने मुंगावली तहसील का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सहकारिता, ऊर्जा संरक्षण, सदस्यता महाअभियान और हरित सहकार अभियान की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और तय समय पर लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को बेहतर बिजली सेवाएं देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर बिजली समाधान शिविर लगाए। इन शिविरों में उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर भी जिले में लगातार गतिविधियां चल रही हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कलेक्टर साकेत मालवीय ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तुलसी सरोवर तालाब में श्रमदान कर साफ सफाई की। वहीं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने नवांकुर संस्थाओं के माध्यम से बावड़ी उत्सव का आयोजन किया। अब बात करते हैं जिले की ऐतिहासिक धरोहरों की। अशोकनगर की ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को पर्यटन से जोड़ने के लिए जिला पुरातत्व और पर्यटन तथा संस्कृति परिषद की ओर से पर्यटन मित्र तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पर्यटन मित्रों के लिए 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। विश्वख्यात चंदेरी साड़ी की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अब प्रत्येक चंदेरी साड़ी पर GI टैग लगाया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि चंदेरी साड़ियों के संरक्षण और बेहतर विपणन के लिए हैंडलूम पार्क के नाम से एक समर्पित वेबसाइट तैयार की जाएगी और MPIDC को इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब बात करते हैं खेती किसानी की। जिले में खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। कृषि उपसंचालक अमित भदौरिया ने बताया कि इस वर्ष 3,08,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल बोने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सबसे अधिक 1,78,000 हेक्टेयर में मक्का, 65,000 हेक्टेयर में सोयाबीन और 9,000 हेक्टेयर में मूंग तथा 2,500 हेक्टेयर में उड़द की बुआई की जाएगी। समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में भी जिले में विशेष अभियान चलाया गया। बीते दिनों नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी उत्साह के साथ मनाया गया। अशोकनगर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुंगावली विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिले में संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात करें तो इस योजना के तहत जिले के हजारों हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित किया गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिले के हितग्राहियों के खातों में कुल 1,49,22,000 रुपए की पेंशन राशि अंतरित की। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था से जुड़ी खबर की। श्रद्धेय जैन मुनि सुधा सागर जी महाराज के संबंध में व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक टिप्पणी प्रसारित किए जाने के मामले में जैन समाज ने ज्ञापन सौंपा था। समाज की सूचना पर थाना कोतवाली अशोकनगर में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है। खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से जिले में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत एथलेटिक्स कोच की नियुक्ति की गई है। ये कोच एथलेटिक्स में रुचि रखने वाले युवाओं के साथ साथ आर्मी और MP पुलिस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की शारीरिक तैयारी करने वाले युवक युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। सुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की गई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों की जमीन के सीमांकन और बंटवारे के लंबित मामलों का समय पर निराकरण करने, CM हेल्पलाइन की शिकायतों का समाधान देने और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं रेल यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। अशोकनगर जिले से होकर गुजरने वाली बीना गुना रुठियाई पैसेंजर ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। बीते दिनों क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बीना के लिए रवाना किया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 6 बच्चों का उपचार कराया जाएगा। इन बच्चों को सर्जरी के लिए मुंबई के प्रसिद्ध नारायणा हॉस्पिटल के हेल्थ SRCC भेजा गया है। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में इन बच्चों का इलाज किया जाएगा। और अंत में बात जागरूकता अभियान की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्याय सबके लिए अभियान के तहत ग्राम सीहोर में बीते दिनों आदिवासी समुदाय के बीच विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में वन अधिकार अधिनियम 2006, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम और

0: अभी आप सुन रहे थे अशोकनगर जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं चांद शुभ्री की आवाज़ में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे चांद शुभ्री की आवाज़ में ये गीत। इसी गीत के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म वीरज़ारा से। इसमें आवाज़ थी उदित नारायण की, गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था मदन मोहन ने। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म वेलकम से। इसमें आवाज़ थी आनंद राज आनंद और साथियों की। गीतकार और संगीतकार थे आनंद राज आनंद। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला।

कार्यक्रम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे से। इसमें आवाज़ें थीं अलका याग्निक सोनू निगम की और गीतकार सलीम बिजनोरी ने और संगीत दिया था डब्बू मलिक ने। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला।

माफ कीजिएगा, इसमें आवाजें थीं सुनिधि चौहान और वाजिद की। गीत लिखा था शब्बीर अहमद ने और संगीत दिया था साजिद वाजिद ने। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म रेडी से। इसमें आवाज़ें थी अमृता काक और मीका सिंह की। गीत लिखा था आशीष पंडित ने और संगीत दिया था देवी श्री प्रसाद ने। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म रहना है तेरे दिल में से। इसमें आवाज़ थी रूप कुमार राठौर की और गीत लिखा था समीर ने, संगीत दिया था हरीश जया राज ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: दस्तक नहीं दी है। इस इंतज़ार को और कितने दिन, इस इंतज़ार की घड़ियाँ और कितनी लंबी होगी। हम उम्मीद का दामन थाम कर ये तो सोच ही सकते हैं कि ये इंतज़ार जल्द से जल्द ख़त्म होगा और हम बहुत जल्द उस बारिश में भीगते नज़र आएंगे जिसका हम सभी को बड़ी उम्मीदों के साथ बेसब्री से इंतज़ार है। फ़िलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे आज के पहले श्रोता के कॉल का।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी।
1: ये सर मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा।
0: अशोक जी।
1: जी
0: जबलपुर से बोल रहे हैं
1: सर आप।
0: हम तो बहुत बढ़िया हैं और आपसे बातें करते हुए हमको बहुत अच्छा लग रहा है।
1: मैं भी अच्छा हो गया सर आपसे बात हो रही, पहली बार आपसे बात हो रही, अच्छा लग रहा।
0: जी हाँ जी हाँ। बताइए अशोक जी, आपके शहर का मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम तो धूप ही है सर, बहोरा अड़तीस चल रहा है, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं आते, बादल बस।
0: अच्छा सिर्फ बादल आ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है?
1: हाँ ऐसे कहीं कहीं जो बर्फ जाता है छोटा मोटा।
0: अपने देश का लगभग अधिकांश हिस्सों में लगभग यही स्थिति बनी हुई है।
1: जी सर आए झमाझम बारिश तो उसका इंतजार है।
0: हम सभी को उस खूबसूरत बारिश का इंतज़ार है जिसके ज़रिए हम अपनी इस गर्मी से निजात पाएंगे। जी बताइए कौन सा गीत आज आपके लिए हम निकालें?
1: अब आ जाए तो पर्वत से काली घटा टकराई चांदनी मूवी का है।
0: अच्छा जी
1: आशा भोसले की प्रिंसेस देवा की आवाज़।

0: नमस्कार
1: नमस्कार जी, आकाशवाणी भोपाल।
0: जी हाँ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं।
1: जी, मैं रमेश नायक, ग्राम खेरोकला, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: रमेश नायक जी,
1: जी जी हाँ,
0: कैसे हैं नायक साहब?
1: मैं बढ़िया हूँ जी। सर आप कौन बोल रहे हैं?
0: आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं, शिवम।
1: शिवम, अच्छा, जी
0: जी
1: अच्छा। और सुनाए, और क्या है समाचार?
0: हम तो बढ़िया हैं, आप बताएं आपके यहाँ क्या है, इन दिनों हालात कैसे हैं, मौसम?
1: सर आप तो गर्मियों के ही चल रहे सर, जो है
0: अच्छा
1: अभी तो
0: अच्छा
1: यहाँ
0: अच्छा
1: बारिश नहीं हुई है, जो है बहुत गर्मी पड़ रही।
0: तो अभी वहाँ पर बारिश की दस्तक नहीं हुई है?
1: नहीं अभी यहाँ एमपी में तो सुन रहे कि वहाँ हो चुकी है, इंदौर भोपाल तरफ कहीं।
0: नहीं, बारिश तो हमारे यहाँ पे भी आई है, मौसम में ठंडक आ चुकी है, उतनी गर्मी तो नहीं है,
1: हाँ,
0: लेकिन
1: यहाँ यूपी में नहीं बारिश हुई अभी, उत्तर प्रदेश में।
0: अच्छा जी। चलिए,
1: और
0: हम
1: सुना से तमाम भाई, क्या है समाचार यार दोस्त यार?
0: बहुत बढ़िया हैं। हम चाहते हैं कि हम ये प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द आपके यहाँ पे भी उम्मीदों की बरसात
1: बहुत
0: हो।
1: बहुत शुक्रिया दोस्त यार।
0: जी।
1: और फार्मेसी प्रोग्राम चल रहा ना?
0: हाँ जी, आज हम आपके फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ़ोन करें गीत सुने कार्यक्रम के लिए।
1: वेरी गुड वेरी गुड यार, तो एक
0: जी
1: गाना सुना देना दोस्त यार शिवम भाई।
0: हाँ जी, बताइए।
1: एक यार, ये अनमोल मोदी फिल्म है जो है,
0: हाँ
1: बहुत पुरानी
0: हाँ
1: पिक्चर है ये। हाँ,
0: जी
1: उसमें ऐसा भोसले ने एक गीत गाया कि मोतियों की सेज बिछाई हुई है, सेज
0: ये मोतियों की सेज बिछाई हुई।
1: बिछाई हुई है,
0: अच्छा जी।
1: दिल की दुनिया सजाई हुई है, आजा आजा लेके बारात आजा। अभी शादियों का दौर चल रहा है, ज्यादा 12 जुलाई तक शादियां हैं अभी।
0: हाँ, इस फरमाइशी गीत को हम ज़रूर पेश करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल दोस्त यार, बड़ा अच्छा लगा से हम भाई यार तुमसे बात करके।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते
1: सर नमस्ते।
0: जी।
1: सिवनी से बात कर रहा हूँ, राहुल दुर्वे, जिला
0: कौन सी वाली सिवनी?
1: सिवनी है मध्य प्रदेश।
0: अच्छा जी, ये छिंदवाड़ा के नज़दीक जो पड़ता है वो?
1: हाँ, छिंदवाड़ा के
0: अच्छा
1: नजदीक
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: 20 किलोमीटर दूर है मेरा गांव यहाँ से, जहाँ पे मैं रहता हूँ।
0: अच्छा क्या करते हैं आप?
1: सर मैं वीडियो कॉन DTH के ऊपर जॉब करता हूँ।
0: अच्छा जी। और घर परिवार में कौन कौन है?
1: हाँ सभी है, मम्मी पापा। सर
0: तो रेडियो का शौक आपको कहाँ से लगा, ये बता सकते हैं?

0: अभी सर पर भोपाल को एक साल से सुन रहा हूँ सर, मैं तो ज्यादा मैं बालाघाट से जुड़ा हुआ हूँ। अभी भोपाल में मुझे सबसे ज्यादा जो प्रिय है मेरा जो
1: जी
0: करे गीत चले, ये मुझे लगता है सबसे फेवरेट है, और आप पूरे सातों दिन चलाते हैं ये बहुत बड़ी बात है सर।
1: हाँ,
0: ये मेरे को सबसे जिससे आकाशवाणी में लगभग मैं सुनता हूँ
1: जी,
0: तो ये जो भोपाल है इसमें सातों दिन जो चलाते हैं ये बहुत जबरदस्त लगता है मुझे। जो कॉलर्स हमारे जुड़ते हैं अलग अलग गांव से शहर से, ये बहुत अच्छा लगता है
1: जी। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अलग अलग शहरों के, अलग अलग हिस्सों के, देश के हिस्सों से जब फ़ोन आते हैं तो हमारे नए नए श्रोता या पुराने श्रोता तरह तरह की बातें करते हैं। गीत तो आप किसी भी कार्यक्रम में सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हमारे श्रोताओं की जो बातें हैं वो इस कार्यक्रम में चार चांद लगाती है।
0: हाँ ये जबरदस्त।
1: बताइए, कोई गीत जो आज आप सुनना चाहते हो वो हम आपको ज़रूर सुनवाएं।
0: दीवाना दीवाना मूवी का रहेगा सर, तेरी
1: अच्छा जी, दीवाना फिल्म का कौन सा गीत?
0: अदा पे।
1: बहुत बढ़िया गीत आपने सुनना चाहा है, और इस गीत को
0: सर आप किसके बात हो रही है आज?
1: आज आप बात कर रहे हैं शिवम से।
0: हाँ शिवम, हाँ सर धन्यवाद सर।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते
1: जी नमस्कार
0: जी, किनसे हमारी बात हो रही है ये सबसे पहले जान लें।
1: जी। शिवम जी, मैं ग्राम गौर झामर जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर।
0: जी विपिन भाई, कैसे हैं?
1: अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। और आज लगभग 2 ढाई महीने के बाद याद आई भोपाल की, तो हमने कहा चलो आज कॉल करते हैं और
0: बहुत
1: देखते
0: बढ़िया,
1: हैं
0: आपने
1: किससे बात होती है।
0: हमारे अनुरोध को स्वीकार किया कि हमारे वो श्रोता जो फ़ोन कॉल लगाना चाहते हैं लेकिन किन्हीं ही वजहों से उनका फ़ोन नहीं लग पाता है, उनके लिए आपने थोड़ा सा इंतज़ार किया
1: हाँ जी
0: उनके लिए।
1: बिल्कुल। और मई में तो कॉल नहीं किया मैंने, अप्रैल में बात हुई थी मेरी
0: जी,
1: जी, तो जून भी खत्म होने वाला है। आप बताइए क्या हाल चाल है आपके।
0: हम बढ़िया हैं। हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार के सभी श्रोता बहुत अच्छे से होंगे ये हम उम्मीद करते हैं।
1: जी बिल्कुल, ठीक ठाक ही हैं और बढ़िया रहेंगे भी।
0: हाँ,
1: और आपसे बात हो जाएगी, हमने सोचा ही नहीं था, लेकिन आप आ गए तो और भी अच्छा लग रहा है
0: कहते हैं ना कि जो मन में दबी हुई इच्छाएं रहती हैं
1: जी।
0: वो कभी कभी अगर बहुत शिद्दत से चाहो ना तो वो उम्मीद वो इच्छा पूरी होती
1: जी बिल्कुल। और आप ना
0: है।
1: जैसे ही हेलो बोला तो हम समझ गए कि आज तो
0: जी
1: शिवम जी
0: जी
1: आए हैं।
0: जी जी बताइए क्या हाल है इन दिनों आपके शहर?
1: हाल चाल बिल्कुल ठीक ठाक ही हैं। और अभी तो बहुत धूप हो रही है, गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ पे, क्योंकि बारिश तो पहले हो चुकी है एक दो बार, 3 4 दिन पहले,
0: जी
1: लेकिन अभी वैसी बारिश तो नहीं हुई है, तो धूप बहुत ज्यादा है। और फिर ग्रामीण क्षेत्र है तो उस हिसाब से खेती किसानी की तैयारियां चल रही हैं अभी तो खरीफ की, और यही बुआई की लोग तैयारियों में हैं और मानसून का इंतजार कर रहे हैं।
0: वैसे देखा
1: बिल्कुल
0: गया है कि मध्य प्रदेश में मानसून जो है वो लगभग 25-30 तारीख के आसपास, जून की जो तारीख है उसके आसपास ही सक्रिय होता है।
1: हाँ जी बिल्कुल। और कल ही प्रादेशिक समाचार में सुन रहे थे कि 30 तारीख तक मानसून आ जाएगा, मतलब ऐसा बताया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि हाँ अगले 2 से 3 दिन में बारिश जरूर होनी चाहिए।
0: चलिए, तो उम्मीदों की बारिश बहुत जल्द आपके यहाँ बरसे, हम ऐसी कामना करते हैं।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: जी बताइए, आज कौन सा गीत आपको सुनवाएं हम?
1: मोहम्मद रफी और लता जी ने गाया है तुम तो प्यार हो सजना,
0: अच्छा जी,
1: शायद दिल एक हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गीत है और अच्छा लगता है मुझे, और अच्छा सदाबहार गाना है, मुझे तुमसे प्यारा और ना कोई, तुम तो प्यार हो सजना
0: वाह कितने कितने
1: जी।
0: खूबसूरत बोल हैं और उतनी खूबसूरत उसकी धुन है, और उससे भी बढ़कर फिर क्या कहें, आवाज़ें जिसमें रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की हो, वो गीत सोने पे सुहागा होना ही होना है।
1: बिल्कुल। और इस गाने के अंतरे भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि पहले उस अंतरे को बोल के बताते हैं वो लोग सिंगर जो गा रहे हैं रफी जी और लता जी, और फिर पहले बोल के बताएंगे फिर उसी को गा के बताते हैं
0: बताइए, चलिए तो कुछ
1: जी।
0: आप भी गुनगुना सकते हैं क्या?
1: मुझे तो मुखड़ा ही याद है, अंतरा तो मुझे याद नहीं आ रहा
0: चलिए
1: है
0: मुखड़ा ही।
1: जी। मुखड़ा की गाने की मैं कोशिश करता हूँ। तुम्हें तो प्यारे हो सजना, तुम्हें तो प्यारे हो, मुझे तुम्हें से, हाँ मुझे तुम्हें से।

0: नमस्कार
1: सर,
0: जी।
1: मैं ग्राम बापू तीतरा खलीलपुर तहसील कोंच जिला जालौन से अंजलि जाटा बोल रही हूँ। जी सर,
0: जी कैसे हैं जी?
1: अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।
1: फिर बॉर्डर हिंदुस्तान का सुनवा देना, याद आती है कलेजा चीर जाती है।
0: बॉर्डर हिंदुस्तान
1: हाँ, इसी में याद आती है कलेजा चीर जाती है।
0: याद आती है, कलेजा चीर जाती है।
1: शिवम सर बोल रहे हैं ना,
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ।
1: पहचान लिया, आपको सुनते रहते हैं, आपकी प्रस्तुति अच्छी लगती है सर।
0: अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब हम आप जैसे श्रोताओं के लिए ही हम अपनी मेहनत करते हैं, और इस मेहनत को अगर आप सराहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी सर, रोज कार्यक्रम सुनती रहती हूँ, आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, बजता रहता, और लखनऊ भी सुन लेते हैं।
0: तो रेडियो से ऐसी कौन सी चीज़ आपने सीखी है, जान सकते हैं?
1: रेडियो से तो सर बहुत कुछ सीखा है हमने, तो 2000 के सुनते आ रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है, बात करना
0: हाँ
1: और सभी गायक कलाकारों को पहचानना, आप लोगों की आवाज़ पहचानना, बहुत कुछ सीखा है।
0: चलिए, ये एक अच्छी बात आपने बताई कि रेडियो से बोलने की कला आ जाती है।
1: जी
0: रेडियो जो है वो सुनने का माध्यम है, लेकिन उससे बोलने की कला आ जाती है। ये देखिए कितनी बड़ी बात निकल के सामने आई है।
1: जी
0: चलिए, तो ये गीत हम आपकी नज़र करते हैं, आपने फ़ोन किया इसके लिए देते हैं आपको धन्यवाद।

0: हाँ जी नमस्कार
1: हेलो। हाँ जी नमस्कार। गणकम आकाशवाणी भोपाल फोन करेगी सुने।
0: जी।
1: जी हाँ सर, कैसे हैं आप?
0: हम बढ़िया हैं और आपका परिचय एक बार फिर से जान लें।
1: जी सर, मैं ग्राम बिजोरा जिला सागर मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता गोलू कुमार अहरवाल।
0: गोलू भाई कैसे हैं?
1: बस सर मैं तो बढ़िया हूँ, और आप बताइए शिवम सर जी कैसे हैं आप?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।
1: जी
0: और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: बस सर जी, अभी तो मतलब बोनी की बुआई चल रही है, मतलब बोनी स्टार्ट होगी सर जी हमारा होना।
0: अच्छा, तो आपने क्या किस फसल की बोनी कर रहे हैं इस बार?
1: सर हमारे यहाँ तो सागर जिले में सर जी मक्का की बुआई ज्यादा होती है, मक्का और उड़दा की।
0: अच्छा, तो मतलब ये बारिश के दौरान आप मक्के की खेती करते हैं?
1: हाँ, क्योंकि सर अभी कुछ दिन पहले बारिश हमारे यहाँ हो चुकी है, तो थोड़ा सा बतर आ चुका था सर जी खेत में, तो बोनी मतलब स्टार्ट होने लगे हमारे यहाँ पे। सर
0: इतना समय निकाल लेते हैं बोनी के बीच में कि रेडियो के लिए वक्त निकल जाए?
1: समय तो निकाल लेते, क्योंकि रेडियो से सर जी खेती किसानी से जुड़ी हुई बातें बताते हैं विशेषज्ञ लोग, तो उनके लिए सुनना पाता है सर जी जरूरी।
0: चलिए, तो वो उन जो बातों पे आप अमल भी करते होंगे, उनसे कुछ आपको सुविधाएं भी मिल जाती होगी, लाभ
1: जी
0: भी
1: सर,
0: मिलता होगा।
1: जी सर सुनते हैं, और बाकी उनकी बात को अनसुनी नहीं करते, अमल में भी लाते हैं सर जी। जो बातें जितने बताते हैं वो सुन के हम लोग ट्राई करते हैं उन बातों के लिए, और जैसा जैसा वो बताते हैं वैसे ही करते हैं हम लोग।
0: बताइए गोलू
1: सर
0: भैया, कौन सा गीत आपके लिए निकालें?
1: सर वो एक गाना ही है, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा
0: अच्छा,
1: मेघा, किस फिल्म का गाना है
0: ये
1: आपके दिमाग में
0: मनुहार
1: आ रहा है?
0: है, गुरु फिल्म की।
1: अच्छा, गुरु फिल्म का है।

0: हेलो
1: हाँ जी, नमस्कार
0: जी, नमस्कार सर।
1: जी, बताइए।
0: खुदा ने खुश होकर के पूछा कि क्या चाहिए। मैंने कहा खुशी, कामयाबी और लंबी उम्र। अंदर से फिर आवाज आई कि किसके लिए, तो मैंने कहा कि इस वक्त जिनसे मेरी बात हो रही है उनके लिए।
1: बहुत बहुत बहुत बढ़िया, आपका ये तारुफ का जो अंदाज़ है हमें बहुत पसंद आया। अब हम ये भी जान लें कि किन से हमारी बात हो रही है।
0: मैं आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ, पालदा नाका इंदौर से, मोहम्मद रफी मंसूरी।
1: मोहम्मद रफ़ी मंसूरी।
0: जी, कैसे हैं सर आप?
1: हम भी बहुत बढ़िया हैं जी।
0: बहुत बढ़िया हाल चाल सर, और मौसम भी बहुत सुहाना हो गया। थोड़ी बरसात शाम के टाइम होने लग गई शुरू यहाँ पर।
1: अच्छा जी, बताइए कौन सा गीत हम आपके लिए निकालें।
0: फिल्म का नाम है दो खिलाड़ी, और गायक कलाकार है मोहम्मद रफी, और गाने को बोले झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया।

0: देखो बरखाने प्यार।
1: हेलो।
2: हाँ जी नमस्कार।
1: हाँ नमस्ते सर जी, मैं ग्राम अजान बोल रहा हूँ, गेंदालाल परिहार। हाँ सीहोर के पास गांव है उलझावन।
2: कितनी दूर पड़ता है सीहोर से?
1: जी वो जो अपने नियर बाय आती पर से भदभद रोड गया नहीं उसी पड़ता है जी।
2: अच्छा
1: सर जी, मैं तो अपनी पसंद के पर रहता है, जो जो नए भी सुनते हैं पुराने सुनते हैं सभी।
2: कहते हैं ना कि जो अच्छा होता है वो नया भी नहीं होता पुराना भी नहीं होता, वो सदाबहार होता है।
1: जी वो तो परिवर्तन क्या परिवर्तन होता रहता, अच्छा लगता है परिवर्तन भी।
2: एक रास्ता से ऊब जाता है इंसान तो परिवर्तन एक नई ताजगी के साथ में हमारे सामने आता है।
1: जी हाँ सर।
2: जी बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाएं हम?
1: जी पुराने फिल्म है आंखें तो गाना मिलती है जिंदगी में कभी कभी।

0: मोहब्बत कभी कभी।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति शिवम कश्यप की थी। प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11:58 हुए हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के परिचालन और दिशा निर्देश जारी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया जाएगा। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए टीम घर घर पहुंचेगी। श्री अमरनाथ जी की यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शलाका जनजाति चित्र प्रदर्शनी के तहत गोंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ये प्रदर्शनी 30 जून तक संचालित की जाएगी। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है और दीप्ति शर्मा महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने अपना 356वां विकेट लेकर दिग्गज झूलन गोस्वामी के 355 विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम श्रोताओं की फरमाइश पत्रों के द्वारा जो हमें मिलती है उन्हें हम सुनवाते हैं, उनकी पसंद के गीत हम सुनवाते हैं। कार्यक्रम का आरंभ करने जा रहे हैं पुकार फिल्म के इस गीत से, जिसकी धुन बनाई है A.R. रहमान ने, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, आवाज़ें कविता कृष्णमूर्ति और शंकर महादेवन की है। इस गीत को सुनना चाहा है कागज पुनर्ज से महेश हजारे, मिंताशु हजारे, आदित्य हजारे, इचलकरंजी महाराष्ट्र से वसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे इसी गीत को पसंद किया है। बस स्टैंड के पास बंडा बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनरथ रेखवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रेखवार और खंडा। और साथ ही साथ ये पत्र हमें मिला है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल तथा चेतन मनवर का। और इसी पत्र में दो नाम और हमें दिखाई दे रहे हैं और वो है रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। इन सभी की पसंद पर सुनते हैं पुकार फिल्म का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तेजाब फिल्म से। अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और साथियों की आवाज़ें हैं। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। इस गीत को सुनना चाहा है सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान ने। राजावत कॉम्प्लेक्स शाजापुर से ये पत्र है मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और पूरा राजावत परिवार। और साथ ही साथ ये पत्र छत्रपति संभाजी नगर से मिला है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश और मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाहकर, राही सरिता गवाहकर, सिद्धांत गवाहकर, प्रिंस एकांश और विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी ने साथ ही साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है।

अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर ने डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ये पत्र हमें मिला है। राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये का जयराज प्लॉट राजकोट से इस गीत को पसंद किया है। मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, आरती पूजा जास्मीन और प्रयागराज भट्ट ने। खलनायक फिल्म का गीत हमारे इन श्रोताओं ने पसंद किया है। आवाज मनहर उदास और अलका याग्निक की है। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत धुन पर अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा ये गीत अलका याग्निक और मनोहर उदास की आवाज़ों में खलनायक फिल्म से। इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे। मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आप

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की 11वीं।

पिछली कड़ियों में आपने जाना कि इंद्रप्रस्थ नरेश आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजय श्रवा से करना चाहते थे। विजय श्रवा चंद्रहासिनी के प्रति आकर्षित तो था, परंतु प्रेम भुवन मोहिनी से ही करता था। इसी बीच संपूर्ण खंड राज्यों के सेनापति के रूप में विजय श्रवा का चयन हुआ। धारा के दरबार में विजय श्रवा ने हूण सेनापति के अपमानजनक पत्र को पढ़ा और आमात्य ऋषभदेव ने युद्ध के स्थान पर अपमानजनक संधि करने की वकालत की। भुवन मोहिनी ये न सुन सकी और उसने आमात्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। हूणों के खिलाफ युद्ध में भुवन मोहिनी विजय श्रवा के साथ छाया की तरह रही और विजय श्रवा को जीत हासिल हुई। विजय श्रवा ने भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। भुवन मोहिनी उन दोनों के सुखमय जीवन के लिए समाज सेवा में जुट गई। जब वो वापस लौटी तो चंद्रहासिनी ने भुवन मोहिनी का अपमान किया। इससे दुखी होकर विजय श्रवा भुवन मोहिनी को अपने पास बुलाकर अलग रहने लगा। चंद्रहासिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सम्राट विजय श्रवा ने उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भुवन मोहिनी के मनाने पर सम्राट विजय श्रवा ने अपना आदेश वापस तो ले लिया, परंतु स्वयं मुख्य महल से अलग रहने लगा। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 11वीं कड़ी में।

0: देखता हूँ इस तरह अंधेरे में कौन खड़ी है वहां।
1: अरे भुवन मोहिनी, आप कब आई देवी?
2: मेरे आगमन को गोपनीय रखिएगा अरण्यक।
1: तो क्या सम्राट को भी न बताऊं?
2: नहीं अरण्यक, सम्राट कुशल तो है ना?
1: उनकी कुशलता के कहने ही क्या। राजप्रासाद से दूर निर्जन क्षेत्र में पर्णकुटी बनवा कर रह रहे हैं। राजकीय अधिकारी और मंत्रीगण शासन संबंधी आदेशों को प्राप्त करने वहीं पर्णकुटी पहुंचते हैं। और हाँ, राज परिवार के लोगों का प्रवेश निषिद्ध है।
2: क्या?
1: कभी कभी सम्राट राजमहल जाकर राजमाता से मिल लेते हैं, और वो भी वाह्य कक्ष में। राजकुमार को लेकर संरक्षक अवश्य पर्णकुटी में आ सकता है।
2: और साम्राज्ञी?
1: अरे उनका तो प्रवेश एकदम से निषिद्ध है। कई बार साम्राज्ञी ने पत्रों द्वारा उनसे मिलने की प्रार्थना की, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। ऊपर से सम्राट ने पत्रवाहक को कड़े निर्देश दे दिए कि भविष्य में वो कभी भी उनके पत्र लेकर ना आए। और इतना ही नहीं देवी, द्वारपाल को निर्देश हैं कि साम्राज्ञी कभी बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयत्न करें तो उन्हें भी रोक दे।
2: ये कैसा दुर्दैव!
1: देवी, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध होगा यदि मैंने आपके आगमन की सूचना सम्राट को अविलंब न दी तो।
2: परंतु अरण्यक,
1: ये सम्राट के हित में होगा।
3: अरण्यक,
1: हाँ,
3: राजप्रसाद की राजनीति में बड़ी शांति से दिखती है।
1: क्यों सारथी, तुम्हें शांति से कोई कष्ट है क्या?
3: भला मुझे क्यों कष्ट होगा, मुझे तो प्रसन्नता है।
1: नियति को देखो सारथी, जिस देवी भुवन मोहिनी को साम्राज्ञी चंद्रहासिनी क्षण भर को भी सहन नहीं कर पाती थी, वही भुवन मोहिनी अब आराम से सम्राट द्वारा प्रदत्त एक महल में निवास करने लगी, सम्राट की आज्ञा से।
3: यही नहीं, सम्राट को जब इच्छा होती है भुवन मोहिनी

0: बुलवा लेते हैं और वो दिन दिन भर पर्णकुटी में रहती है, संगीत से सम्राट का मनोरंजन करती है, उनके साथ ही भोजन करती है। अरण्यक, क्या इसका पता साम्राज्ञी और राजमाता को नहीं होगा?
1: क्यों नहीं होगा सारथी, अवश्य होगा, पर वो कर ही क्या सकते हैं। हमें तो बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मित्र प्रसन्न हैं। सच पूछो तो सारथी, देवी भुवन मोहिनी का सम्राट के प्रति प्रेम बहुत ही पवित्र है और बहुत ही उदात।
0: तुम ठीक कहते हो अरण्यक।
1: मुझे तो अनुभव हो रहा है कि उनके इस पवित्र प्रेम की सुगंध पूरे वातावरण को और भी सुगंधित बना रही है।
0: परंतु अरण्यक, बहुत दिनों से देवी भुवन मोहिनी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
1: मुझे ज्ञात है सारथी, कई वैद्य चिकित्सक भुवन मोहिनी को देख चुके हैं, परंतु वो समझ नहीं पाए कि उन्हें रोग कौन सा है। और वर्तमान में मित्र की एकमात्र चिंता का विषय भी यही है। चलता हूं सारथी, मित्र के पास पहुंचने का समय हो गया है।
0: अवश्य रण्यक।
1: कक्ष के अंदर आ सकता हूं मित्र?
2: अरण्यक, क्या तुम भुवन मोहिनी के आवास गए थे?
1: अब आपके आदेश को ना मानूं ऐसा कभी हुआ है?
2: कैसी है वो?
1: मित्र, उनकी स्थिति बहुत ही बुरी है। वो लगातार औषधियों की अवहेलना कर रही है। वैद्य के बहुत बाध्य करने पर ही वो कोई औषधि लेती है, परंतु वास्तविक समस्या ये है कि...
2: क्या समस्या है?
1: भुवन मोहिनी किसी से कुछ बोलती ही नहीं, ना तो किसी से बातें करती हैं, ना यही बताती हैं कि उन्होंने औषधि ली या नहीं। मित्र, ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्युशैया में पड़ी भुवन मोहिनी मानो मृत्यु को स्वयं आमंत्रित कर रही है।
2: नहीं अरण्यक, वो ऐसा नहीं कर सकती। क्या उसे ज्ञात नहीं कि मेरे जीवन में उसके ना रहने का क्या अर्थ होगा? माना कि भुवन मोहिनी के बिना मैंने दिन महीने और वर्ष बिताए हैं, परंतु इस आशा में कि एक दिन वो आएगी। परंतु यदि वो...
1: मित्र, देवी भुवन मोहिनी की अस्वस्थता सर्वसाधारण की चर्चा का विषय बन चुकी है। नर्तकी के गृह में जन्म लेने के बाद भी वो अपनी सेवाओं के लिए इतनी राष्ट्रव्यापी ख्याति अर्जित कर चुकी हैं कि अधिकांश जनता उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना कर रही है। जनता की शुभकामनाएं अपना प्रभाव अवश्य दिखलाएंगी। मित्र,
2: हम भी उसे मरने नहीं देंगे। अरण्यक, अरण्यक, मैंने आदेश दिया था कि कोई ना कोई सुयोग्य चिकित्सक सदैव उसके पास रहे। आदेश का पालन हो रहा है ना?
1: अक्षरशः पालन हो रहा है मित्र, चिकित्सक सदैव उनके पास रहते हैं। मित्र, एक रहस्यमयी नारी भी उनके आसपास दिखाई देती है।
2: रहस्यमयी नारी? कौन है वो? क्या कोई चिकित्सक है या परिचारिका या वो दासी है?
1: इनमें से कोई नहीं है मित्र।
2: कोई नहीं है तो ये बात हमें आज तक बताई क्यों नहीं गई? ना ही किसी चिकित्सक ने और ना ही किसी गुप्तचर ने और ना ही दास दासी ने।
1: क्योंकि साम्राज्ञी का ऐसा ही आदेश था।
2: साम्राज्ञी का आदेश? क्या सरोकार था साम्राज्ञी को भुवन मोहिनी की अस्वस्थता से?
1: मित्र, गुप्तचरों से ज्ञात हुआ है कि साम्राज्ञी भुवन मोहिनी के प्रति कृतज्ञता को प्रकट कर आपको प्रसन्न करना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने इंद्रप्रस्थ से एक कुशल महिला चिकित्सक को बुलाया है।
2: तो राज्य कार्यालय से पता करो कि क्या इंद्रप्रस्थ से किसी महिला चिकित्सक को बुलाया गया है।
1: मैंने पता लगा लिया है, ऐसी किसी महिला चिकित्सक को इंद्रप्रस्थ से नहीं बुलाया गया।
2: तो वो कौन है?
1: साम्राज्ञी के शैशव काल की सखी और संबंध में ममेरी बहन।
2: प्रमुख चिकित्सक को अविलंब उपस्थित कराओ।
1: जो आज्ञा मित्र।
3: भुवन मोहिनी की सेवा में लगे प्रमुख चिकित्सक आप हैं?
4: जी हाँ सम्राट।
3: प्रमुख चिकित्सक का क्या दायित्व होता है?
4: रोगी की चिकित्सा और पूरी देखरेख। स्वामी,
3: क्या मैं जान सकता हूं कि भुवन

0: यही तो समझ में नहीं आ रहा सम्राट। एक से बढ़कर एक औषधियां हम उन्हें दे रहे हैं, परंतु किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
1: आप अपने सामने उन्हें औषधियां खिलाते हैं?
0: जी नहीं,
1: क्यों?
0: इसलिए कि रोगिणी औषधियां लेने में अनिच्छुक दिखती हैं, तो इंद्रप्रस्थ से आई चिकित्सक को, जो सदैव उसके पास ही रहती है, आवश्यक निर्देश दे दिया कर

0: किसने नियुक्त किया है उसे? उत्तर दो मुझे।
1: साम्राज्ञी ने।
0: साम्राज्ञी ने? उसके चिकित्सक होने का प्रमाण पत्र देखा आपने?
1: नहीं देव।
0: तो फिर वो चिकित्सक नहीं है?
1: नहीं है।
0: उसकी चिकित्सा नहीं, उसे विष दिया जा रहा है।
1: विष?
0: हाँ विष। एक बात ध्यान रखो चिकित्सक, यदि भुवन मोहिनी के जीवन के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई तो तुम भी जीवित नहीं बचोगे। अब तुम्हें क्या करना होगा तुम निर्णय करो, जाओ यहां से।
2: अरण्यक।
3: बोलिए मित्र।
2: ध्यान से सुनो, अपरिचित महिला चिकित्सक का भुवन मोहिनी के पास रहना भय से रिक्त नहीं। तुम स्त्री वेश में भुवन मोहिनी के समीप रहो, प्रत्येक क्षण देखते रहो कि वो रहस्यमय स्त्री क्या क्या करती है। यदि वो अपनी ओर से कुछ।
3: मैं सब समझ गया मित्र, आगे और बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे आज्ञा दे।

0: मैं स्त्री वेश धारण करके देवी भुवन मोहिनी के आवास में आ गया हूं। कहां है भुवन मोहिनी? ओ, वो वहां एक पलंग पर लेटी हूं। उनके पास लगता है वही अपरिचित महिला चिकित्सक है। क्या करूं, चलता हूं वहीं, देखता हूं क्या होता है।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते, तुम कौन हो?
1: कमला।
2: कमला, तुम नई आई हो क्या?
1: लो और सुनो, स्वयं नई हो तुम, हमें नई कहती हो? हम तो जब इतने छोटे थे तब से हैं इस महल में। तुम अपना नाम बताओ।
2: मेरा नाम? मेरा नाम कुमारी विमला है।
1: तुम भी कुमारी? मैं भी कुमारा। मतलब ये कि मैं भी कुमारी। मेरा नाम कमला, तुम्हारा नाम विमला। अच्छा है ना, लगता है जैसे जुड़वा बहने हो।
2: अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो कमला, मैं कई दिनों से साम्राज्ञी से नहीं मिल पाई हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम यहीं रहना और कोई भी वैद्य चिकित्सक आए
1: जो दवाएं कहेंगे मैं दे दूंगी।
2: वो नहीं देनी है।
1: वो नहीं देनी है?
2: अरे तुम कहाँ से आ गई? देखो, यहाँ के सभी दासियों को अच्छी तरह ज्ञात है कि जो दवा मैं चाहूंगी वही भुवन मोहिनी को दी जाएगी, यहाँ के वैद्य चिकित्सकों की नहीं।
1: अच्छा, तो क्या तुम भी चिकित्सक हो?
2: हाँ, इसीलिए तो।
1: तो फिर ठीक है, जो तुम कहोगी वही दवा देंगे। लेकिन ये
3: ठीक क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी दवा से?
2: हाँ,
1: लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी दवा से?
2: असाध्य रोग है, फिर भी ठीक हो जाएगी, समय लगेगा। अच्छा सुनो, संध्या को आऊंगी और रात में भी रहूंगी, तब तुम चली जाना।
1: ठीक है।
2: तो समझ गई ना?
3: हाँ।
2: ये यहाँ मेरी दवाई रखी है, हर घंटे तुम्हें खिलाना है, पर ध्यान रहे किसी वैद्य के सामने मत खिलाना और उसे ये बताना भी नहीं, वरना

0: क्या? अरे नहीं नहीं मुझे खाल नहीं उतरवानी, मैं मात्र तुम्हारी ही औषधियाँ उनको दूंगी, वैद्य चिकित्सकों की नहीं, तुम निश्चिंत रहो।
1: मैं जाती हूँ।
2: जाओ कहीं।

0: अब मैं भुवन मोहिनी को बता दूं कि वास्तव में मैं हूं कौन। कितनी सूख गई देवी। देवी आंखें खोलिए। देवी भुवन मोहिनी, भुवन मोहिनी देवी।
1: कौन?
0: मैं अरण्यक हूं। मैं
1: अरण्यक?
0: हाँ, अरण्यक ही हूं मैं। आपको षड्यंत्र से बचाने के लिए आया हूं। सम्राट ने भेजा है, आप निश्चिंत रहिएगा। और सुनिए, इस वेश में मेरा नाम कमला है, कमला। जब आप पुकारें कमला कहकर ही पुकारें।
1: ठीक है अरण्यक। सम्राट कैसे हैं?
0: बहुत चिंतित हैं देवी, परंतु अब उनकी भी चिंता समाप्त हो जाएगी। मैं आ गया हूं ना, लीजिए वैद्यों की दी गई दवा खा लीजिए।
1: हाँ, दो।
0: वास्तविक औषधियों के सेवन से आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। और हाँ, वो चुड़ैल कोई भी दवा दे तो बिल्कुल मत खाइएगा।
1: उसका नाम विमला है अरण्यक।
0: आप जानती हैं उसको?
1: हाँ, राजकुमारी की ममेरी बहन है। परंतु यहाँ क्यों बुलाया गया उसे नहीं जानती।
0: आपको मारने के लिए, इससे अधिक मत पूछिएगा, ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है। अरण्यक, देव से कहिएगा हमारी चिंता ना करें।
0: अरे अब किस बात की चिंता, अब सब ठीक हो जाएगा। तनिक ठहरिएगा देवी, मैं बाहर बैठी मोटी मोटी दासियों को रवाना तो कराऊं।
1: अरण्यक, किस षड्यंत्र की बात कर रहे थे? कौन मारना चाहता है मुझे? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? हे प्रभु, यदि अनजाने ही किसी का कुछ बुरा हुआ हो मेरे हाथों तो क्षमा करना प्रभु।
0: सब कहने लगी कि तुम कौन हो, कहां से आई। मैंने कहा कि साम्राज्ञी की ननिहाल से, साहब की सब भाग गईं।
1: अरण्यक, इस विमला के हाथों मैंने मात्र एक बार औषधि ग्रहण की थी।
0: अच्छा?
1: और परिणाम ये हुआ कि 3 दिनों तक अचेत रही। इसीलिए मैं कोई भी औषधि ले ही नहीं रही थी अरण्यक। इन दासियों को बड़े बड़े उपहार देकर उसने सबको अपने वश में कर लिया था। अरण्यक, आप ना आते तो जीवन का अंत ही दिख रहा था मुझे। अरण्यक, एक काम करेंगे?
0: बोलिए देवी।
1: वो दवाएं जो विमला मुझे देती थी उस संदूक में रखी हैं। आप उन दवाओं को आज ही सम्राट के पास भिजवाकर उनकी जांच करवाइए।
0: ये आदेश तो पहले ही सम्राट मुझे दे चुके हैं, मैं अभी लेके जाता हूं।
2: सम्राट की जय हो।
3: आइए चिकित्सक महोदय, आपने उस रहस्यमय महिला द्वारा दी गई औषधियों की जांच पूरी की?
2: हाँ सम्राट, और ये प्रमाणित हो चुका है कि वो औषधियां नहीं वरन
3: वरन
2: बहुत ही तीक्ष्ण विष थे सम्राट।

0: वो चिकित्सिका इस समय कहाँ होगी?
1: साम्राज्ञी से भेंट करने उनके महल गई हैं।
0: हमें तुरंत महल जाना है, रथ तैयार करूंगा।

0: अरण्य के इस महल में हमारे प्रवेश को गुप्त रखा जाए।
1: जो आज्ञा मित्र।
2: प्रणाम सम्राट।
1: चुप रहो, कोई अभिवादन नहीं।
0: ये कौन थी?
1: ये संरक्षिका थी इस महल की।
0: अरे सुनो, तुम सभी दासियां यहाँ क्या कर रही हो?
2: साम्राज्ञी की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं सम्राट।
0: और साम्राज्ञी कहाँ है?
2: विश्राम निकेतन में।
0: उनके साथ और कौन है?
2: उनकी ममेरी बहन कुमारी विमला।
0: ओह, वो दोनों वहाँ क्या कर रही होंगी?
2: हम लोगों को ज्ञात नहीं है देव। हाँ, सुनने में आया है कि सुयोग्य चिकित्सिका होने के कारण साम्राज्ञी ने उन्हें इंद्रप्रस्थ से बुलाया है भुवन मोहिनी की चिकित्सा के लिए।
0: आवर्ण्यक।
1: जी।
2: आज साम्राज्ञी के अपशकुनों की भयानक घड़ी उपस्थित है।
3: ठहरो आवर्ण्यक, कुछ ध्वनियां सुनाई दे रही हैं।
1: हाँ हाँ।
4: मैं केवल एक बार ही अपनी दवा दे सकी, इसके पश्चात उसने कोई दवा ग्रहण ही नहीं की। इन दिनों में वो केवल एक ही बार मुझसे बोली भी।
5: अच्छा, क्या कहा उसने?
4: और क्या कहती, दवा देते समय बोली, मैं कोई दवा ग्रहण नहीं।

0: तो ये लो।
1: ये क्या है?
0: जिस पात्र में वो दवाओं का सेवन करती हो उसमें इस औषधि को मात्र स्पर्श करा देना।
1: अच्छा,
0: ध्यान रहे, मात्र स्पर्श हो, इतना ही पर्याप्त होगा उसके मरने के लिए।
1: इतना शक्तिशाली विष? लाओ, इसे मैं अपने वक्षस्थल में छिपा लेती हूँ।
0: विमला बहन, जब भुवन मोहिनी हमारे पितृग्रह में रहती थी तब वो मुझसे अधिक तुमको चाहती थी और तुम पर पूर्ण विश्वास करती थी। यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया था।
1: यहाँ भी उसी विश्वास के साथ मिली थी, किंतु पहली दवाई के बाद संभवतः या तो वो मुझ पर संदेह करने लगी या सचमुच दवा सेवन नहीं करना चाहती, या हो सकता है सचमुच ही उसमें जीने की लालसा न बची हो। हाँ, ये जो कमला नाम की नई सेविका आई है इसे भुवन मोहिनी की दास दासियां तक नहीं जानती, परंतु भुवन मोहिनी का उस पर विश्वास कुछ अधिक ही है।
0: अच्छा, लो ये मूल्यवान हार उसे पहना देना, वो भी तुम्हारे वश में हो जाएगी।
1: ये तो बड़ा मूल्यवान लगता है, पहनकर दर्पण में देखूं तो। आहा, इसे मैं क्यों ना धारण करूं बहन?
0: छी, लोभिनी। अरे, तुझे मैं ऐसे न जाने कितने हार दूंगी, पहले काम करके तो दिखा। ये हार उसी कमला को देना, संभवतः सम्राट ने उसे विशेष रूप से बुलवाया हो भुवन मोहिनी की देखरेख के लिए।
1: अच्छा ठीक है,
0: ये दूसरा ले, इसे तो अपने लिए रख।
1: ओ मेरी प्यारी बहन,
0: ये उससे अधिक हीरे माणिक वाला है।
1: अच्छा अब मैं जाती हूँ, मेरे पास अधिक समय नहीं है, न जाने पल में क्या हो जाए।
0: ठहर तनिक, मैं किसी दासी के साथ तुझे भिजवाती हूँ। कोई है यहाँ? कहाँ गई सबकी सब?
2: सबकी सब एक स्थान पर इकट्ठी कर दी गई है। सम्राज्ञी,
0: सम्राट, सम्राट?

0: साम्राज्ञी को अधिक कष्ट न उठाना पड़ेगा। मैं स्वयं कुमारी विमला को पहुंचाने के लिए उपस्थित हूँ। नीच स्त्री, कहाँ गई वो चिकित्सिका?
1: वो उधर छुप रही है स्वामी।

0: ठहर जान डालनी, निकाल वो विष की शीशी, कहाँ छुपा रखी है, निकाल कुल्टा।
1: निकालती हूँ, ये रही सम्राट।
0: अरे नेक, इससे दोनों हार भी छीन लो,
2: चल निकाल। दोनों हार कहाँ है?
1: ये है सम्राट।
0: अब इन दोनों की गत मैं बनाता हूँ, चलो दोनों।

अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से, इस कार्यक्रम में भुवन मोहिनी की 11वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस साल के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान परिचालन के दिशा निर्देश जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना जिले के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रवास के अंतिम दिन आज केंद्रीय मंत्री विभिन्न जनकल्याणकारी और लोकहित कार्यक्रमों में सहभागिता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज नीमच में 500 मेगावाट और शासापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी होगा। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए टीम पहुंचेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और भोपाल स्थित मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शलाका जनजातीय चित्र प्रदर्शनी चल रही है। गौंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित हैं। ये प्रदर्शनी 30 जून तक चलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान है।

स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन। आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। श्रोताओं, मौसम, उम्र और जगह के हिसाब से हम सबकी अपनी प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, लेकिन एक बात जो हम सबके लिए हमेशा एक जैसी रहती है वो है हमारा और हमारे परिवार का स्वस्थ रहना, और इसके लिए हम हर संभव प्रयास भी करते हैं, लेकिन बीमारी कभी भी दरवाजे पर दस्तक देकर नहीं आती है। श्रोताओं, अचानक जब कोई बीमारी आ जाती है तब इलाज का खर्च कई परिवारों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। ऐसे में जरूरत होती है एक ऐसे सहारे की जो स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी दे। श्रोताओं, इसी सोच के साथ भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार आर्थिक कठिनाई के कारण इलाज से वंचित ना रहे। इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्हें सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा मिलती है। इस योजना का लाभ सरकार द्वारा निर्धारित पात्र परिवारों को मिलता है, साथ ही 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना का लाभ मिलता है। श्रोताओं, आपका नाम पात्रता सूची में है या नहीं, ये आप आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट, कॉमन सर्विस सेंटर या सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान मित्र से जान सकते हैं। श्रोताओं, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है, इसीलिए सही जानकारी रखें, अपनी पात्रता की जांच करें और पात्र बनकर इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि स्वस्थ रहकर ही हम खुश रह सकते हैं और अपने आप से कह सकते हैं लव यू जिंदगी।

0: श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण और अब कार्यक्रम में वक्त है आज की भेंट वार्ता का। योग और मोटापा, इस विषय पर हम आपको सुनवा रहे हैं आज की भेंट वार्ता, जिसमें विशेषज्ञ हैं डाइटिशियन और योगाचार्य ममता गुरु और इनसे बातचीत कर रही हैं अर्चना सक्सेना।
1: श्रोताओं, माता पिता हमेशा अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाना चाहते हैं, फिर चाहे वो शिक्षा हो, संस्कार हो या सेहत ही क्यों ना हो। उनका हमेशा यही स्वप्न होता है कि उनके बच्चे हर हाल में स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत करें। लेकिन आज के दौर में बच्चों को मोटापे जैसी कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डाइटिशियन और योगाचार्य ममता गुरु को। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, तो क्या कारण है, या ये कहें कि ये किन किन कारणों से हो सकता है?
2: देखिए, कारण तो बहुत सारे होते हैं और सबसे पहले तो हमारे घर से ही शुरू होते हैं वो कारण, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल, और इसमें सबसे बड़ा रोल माँ का होता है, क्योंकि जैसे हम हैबिट डाल देते हैं घर में जिस तरीके से लाइफ स्टाइल की, तो वैसा ही वो परिवार में परिवेश बनता जाता है और कहीं ना कहीं वो एक ड्रॉबैक हो जाता है, जैसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करना और सारी चीजें, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका एक रीजन बन जाता है। फिर मेडिकल पॉइंट्स भी रहते हैं मोटापे के।
1: अगर हम कंपेयर करें हमारे बचपन के समय की, या ये कहें कि आज के बच्चों से हम पुराने समय के बच्चों की कंपैरिजन करें, तो आज हमें, चाहे वो टीनेज वाले बच्चे हों या बढ़ती उम्र के बच्चे हों या फिर छोटे बच्चे हों, सभी में ओबेसिटी का रेशियो कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बच्चों में ये ओबेसिटी का क्या कारण है?
2: देखिए, रीजन बेसिक ये है कि न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमको रेगुलर रूटीन में चाहिए बॉडी के डेवलपमेंट्स के लिए, वो हमको नहीं मिल रहे हैं। कारण क्या है कि टेस्ट पर बच्चे ज्यादा जाते हैं, फास्ट फूड्स ले लिए तो कैलोरीज तो मिल गई, भूख भी दब गई, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए एक्चुअली वो चीजें नहीं मिली। तो जब क्या होता है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी बॉडी में होने लगती है, तो भी कहीं ना कहीं मोटापा बढ़ने लगता है। दूसरा रीजन क्या है कि फिजिकल उतना नहीं, क्योंकि आप देखिए, एक छोटा सा बच्चा भी मोबाइल लेकर के बैठ जाता है, वो घंटों बैठा रहेगा, आवाज तक मुंह से नहीं करेगा, और जबकि पहले के जब कंपेयर स्टडी अगर हम करें तो पहले ऐसा नहीं होता था। हम ही लोगों ने पिट्ठू और पता नहीं कौन कौन से गेम, पोशंपा और बहुत सारी चीजें हमने खेली है, लेकिन आज के हमारे बच्चे ये नाम को भी जानते हैं, तो उनको तो नाम भी नहीं पता ये। तो एक रीजन ये भी है मोटापे का, जो हर एज ग्रुप में हमको देखने के लिए मिल रहा है।
1: अभी आपने को जो कारण बताए बच्चों में ओबेसिटी के, तो एज एन एडवाइस टू पेरेंट्स क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए जिससे इस प्रॉब्लम को कम किया जा सके?
2: आप समझाइए बच्चों को कि वो एटलीस्ट थोड़ा सा फिजिकल करें। फिजिकल का मतलब ये कि स्पोर्ट्स में कुछ इंक्लूड हो जाए, कुछ नहीं तो स्टेडियम ज्वाइन करा दीजिए, कुछ भी एक्टिविटी जिसमें उनका फिजिकल हो सके। आजकल क्या होता है, पेरेंट्स ही बोलते थे, अरे उसके पास तो टाइम कहाँ है, वो पढ़ेगा कि क्या करेगा। तो लेकिन मेरा कहना ये है कि एक डिसिप्लिन और एक टाइम टेबल हर एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो। छोटे से बच्चे की अगर हम आदत डाल देंगे तो वो आप देखिए खुद अपना एक टाइम टेबल मैनेज करेगा, मुझे इतने बजे उठना है, और देखिए सबके पास 24 घंटे हैं, बहानों का मुझे लगता है अंत नहीं है, लेकिन उसी टाइम में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो हम वाकई में कर सकते हैं। तो हमें ये बच्चों में आदत डालना चाहिए।
1: आपने आहार पोषण खान पान की बात की, तो निश्चित ही खान पान एक बहुत अहम पार्ट होता है हमारी लाइफ स्टाइल का, तो हमें बच्चों को क्या बैलेंस डाइट या क्या संतुलित आहार देना चाहिए जिससे कि उन्हें फिट और हेल्दी रखा जा सके?
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हमारे सराउंडिंग में ही है इसका आंसर, कि जितने भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं उनका भरपूर इंटेक करना चाहिए, और जितना भी हो सके आप पेट भर के अच्छे से खाना खाइए, ताकि ये नहीं रहे कि थोड़ी देर में फिर और कुछ खा लिया, थोड़ी देर में फिर और कुछ खा लिया। तो यदि हम एक बार पूरी बैलेंस डाइट लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी दही सलाद, ये सारी चीजें अगर हम एक बार में ले लेते हैं, तो हमको फिर ऐसी भूख नहीं लगेगी, जैसे लगता है ना टेम्पटेशन हो रहा है, अब कुछ खा लो फिर कुछ खा लो, तो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है वजन को बढ़ाने का। और इससे क्या होता है, जब हमारा वजन बढ़ता है तो मेंटली शिथिलनेस हमारी बॉडी में आती है, तो दिमाग भी उतना सोच नहीं पाता, उतना क्रिएटिव नहीं रह पाता। तो अगर क्रिएटिव रहना है तो बॉडी को भी हमें क्रिएटिव और एक्टिव रखना पड़ेगा।
1: ममता जी, जैसे कि बात चल रही है ओबेसिटी यानी कि मोटापे की, तो मोटापे का बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या योग इस समस्या को कम करने में मदद कर सकता है?
2: बिल्कुल करता है, और यदि अपन सही यौगिक क्रियाएं करेंगे तो आपको मेंटल फिजिकल दोनों रिजल्ट्स मिलेंगे, और ब्रेन भी आपका इतना बढ़िया वर्क करेगा, और बॉडी हमेशा हमेशा एनर्जेटिक और रिफ्रेश रहेगी और मोटापा कभी भी बढ़ेगा नहीं, और बल्कि धीरे धीरे बॉडी शेप में आएगी, फेस पे ग्रेस आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, साथ ही इम्यून स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये सब चीजें वहीं पर दब जाती है जब हमारा वेट बढ़ जाता है, माइंड भी डल हो जाता है। लेकिन जब हम इस पर विजय प्राप्त करते हैं तो ये जो हमारे अंदर की क्वालिटीज है वो सारी निखर के बाहर आती है और मन भी सुंदर हो जाता है, हमारा मस्तिष्क भी बहुत अच्छा वर्क करता है।
1: तो योग से इस समस्या को कम करने में हमें कैसे मदद होगी? कुछ ऐसे आसन हमें आप बता सकते हैं जो कि बच्चों में बढ़ती हुई ओबेसिटी को कम करने के लिए कुछ फायदेमंद हो?
2: बहुत अच्छा हमारा एक आसन का कॉम्बिनेशन है जिसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। 12 आसन है, सारे स्ट्रेचिंग पोज

0: होता है, तो बैक बेंचर भी नहीं बनेंगे, फ्रंट में आ जाएंगे। तो वो चीजें सब बच्चों को बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। संगी कुछ थोड़े से प्राणायाम कर लें तो हमारी मेमोरी को भी और कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, किसी गुरु के मार्गदर्शन में सीख लें, एक ही दो सेटिंग में आपको करेक्शन हो जाता है। सूर्य नमस्कार सीख लो और उसको रेगुलर करते रहें।
1: योग और संतुलित आहार का पालन करने से बच्चे भविष्य में भी क्या ओबेसिटी या मोटापे की तकलीफ से या कहें कि उससे जुड़ी बीमारियों से बचे रह सकते हैं?
0: बिल्कुल, डेफिनेटली। अब हम देखें, आजकल मुझे ऐसा लगने लगा है कि क्योंकि डेली रूटीन में हमारे पास बहुत लोग आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यंगस्टर्स की संख्या रेगुलर बढ़ रही है हमारे पास में। और उसमें मैं बोलूंगी उम्र भी कुछ नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चा भी आ रहा है और बड़ा भी आ रहा है, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फेस कर रहे हैं बच्चे वो भी आ रहे हैं। स्ट्रेस तो सबके ऊपर है, छोटे बच्चे पे भी है। तो कहीं ना कहीं योग हमको इन सब चीजों से बचा लेता है। मेडिकली भी कोई अगर प्रॉब्लम मान लीजिए आ गई है बॉडी में, हेरिडिटी से भी आ जाती है कई बार हमारी गलत आदतों से भी आ जाती है, तो अगर ऐसा कुछ आ भी गया तो वो भी हम योग से इजीली करेक्शन कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और नॉर्मल बेटर फिट लाइफ को हम जी सकते।
1: जैसे कि आजकल यंग गर्ल्स में हम देखते हैं पीसीओडी या पीसीओएस, बहुत ज्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो क्या योग से इन हार्मोनल इम्बैलेंसिंग्स को ठीक किया जा सकता है? ऐसे कुछ आसन हमें बताएं जो इनके लिए फायदेमंद हो, क्योंकि ये समस्या आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ममता जी,
0: जैसा मैंने बताया कि सूर्य नमस्कार वो तो करना ही है, वो कर लीजिए, कम्प्लीट स्ट्रेचिंग पोजेज है, और जैसे पीसीओडी पीसीओएस या फिर स्ट्रेस एंजाइटी, ये बहुत सारी चीजें जो यंगस्टर्स में हम अभी देख रहे हैं, उसको रिलीव करने के लिए ध्यान मुद्राएं, कुछ आसन, वज्रासन, सुप्त वज्रासन, जैसे आपने बोला कि जो हार्मोनल डिसबैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए, तो सुप्त वज्रासन है, मत्स्य आसन है, अर्ध मत्स्य इंद्रासन, ये कुछ आसन ऐसे हैं, थोड़े से ट्विस्टिंग पोजेस हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, पर इनका अभ्यास यदि करते हैं तो ये रिजल्ट्स जबरदस्त देते हैं। मतलब आपको कभी भी वो प्रॉब्लम रिवाइज ही नहीं होगी और बल्कि क्योर हो जाएगी और नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। लेकिन फिर यही बोलूंगी कि एक बार कि हमको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हमको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, फिर आप देखिए इतने जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपकी सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी।
1: जैसे कि अभी हमने बात की यंग गर्ल्स की, वैसे ही आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है जो यंगस्टर्स हैं, कहीं भी बैठे हुए हार्ट अटैक आ गया, चलते हुए हार्ट अटैक आ गया, डांस करते हुए आ गया, और उम्र की कोई सीमा नहीं है, तो क्या कारण है और उनके लिए योग कैसे फायदेमंद हो सकता है?
0: मेरे ख्याल से प्रश्न तो सबके दिमागों में कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, चाहे अपन उस व्यक्ति को जानते हो ना जानते हो, लेकिन एक झटका सबको लगता है। फिर एक बेसिक रीजन यहीं पर है, हमारी लाइफस्टाइल और हेरिडिटी। अगर आपको लगता है कि आपके हेरिडिटी में ये इस टाइप के केसेस कंटिन्यू हर पीढ़ी में हो रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए अवेयर हो जाइए, कुछ करिए। कुछ करिए का मतलब ये कि आप योगिक क्रियाएं करिए, जैसे किसी भी चीज को देखिए पोस्टपोन कर सकते वो हमारे हाथ में है। जैसे ऊपर वाले ने जीवन तो आपको दिया, लेकिन जो जीवन हम जी रहे हैं वो तो हमारे हाथ में है। हम कैसा जी रहे हैं, हम अंतिम समय पर 10-15 लोगों की सेवा लेके जा रहे हैं, 10-15 लोगों की सेवा करते हुए जा रहे हैं, निर्धारित हमारे ऊपर है। तो वो ही बस चीज को फॉलो करें कि हमारा बैकग्राउंड में क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है। या मान लीजिए अगर आपको किसी को भी बीपी थोड़ा भी हो गया, उम्र की बात नहीं कर रही हूं मैं, किसी भी उम्र में, तो हम उसके लिए अवेयर हो जाएं, डॉक्टर का गाइडेंस बराबर लें, जो उनकी गाइडेंस है उसको प्रॉपर करें, हम फिजिकल प्रॉपर करें, यौगिक क्रियाएं गुरु के मार्गदर्शन में करें। ये नहीं कि हम कई बार क्या होता है घर में ही बैठ करके करें, पता चला बीपी इतना शूट अप हो गया, वहीं ऑफेंट हो गए, तो कोई भी ऐसा रिस्क ना लें फिर। और अपनी मॉनिटरिंग पूरी करते रहें, अपना एनालिसिस पूरा, थक गए हैं तो रेस्ट करें, ऐसा नहीं कि फिर भी करे जा रहे हैं, तो एक्सेस भी नुकसान करता है और कुछ भी ना करना भी नुकसान देता है। तो दोनों चीजों में हमको बहुत अवेयर रहने की जरूरत है।
1: यदि बच्चों को हमें योगाभ्यास प्रारंभ कराना है ममता जी, तो उसकी सही उम्र क्या है और उसे कैसे प्रारंभ कराया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं तो बोलती 5 साल के बच्चे से ही शुरू कर दें योग, तो कहीं पर कोई हमें दिक्कत आएगी ही नहीं, हमारा बच्चा भी स्वस्थ, हम भी हैप्पी, फैमिली भी खुश और कहीं कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों को क्या होता है, वो बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है क्योंकि ग्रोइंग एज है, तो उनको क्या होता है कि मूवमेंट्स बहुत, मतलब इतने बढ़िया सुंदर आसन करेंगे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आसन, पर अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर एक बार आ गई बॉडी में तो जीवन भर आनंद देगी वो तो। लेकिन एक चीज और बोलना चाहूंगी, जब जागे जब सवेरा। मान लीजिए इतनी उम्र में नहीं शुरू करा, लेकिन हमें जब समझ में आया हम तभी शुरू कर लें।
1: बिल्कुल। अब एक और प्रश्न ये जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसे कॉमन आसन योग के जो हर व्यक्ति कर सकता हो और फायदेमंद भी हो।
0: देखिए सबसे मुख्य है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राण प्लस आयाम, एडिशन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड प्राणायाम। तो प्राणायाम से हम शुरू करें, कोई भी उम्र हो, और कुछ पर्टिकुलर आसन जैसे वज्रासन है, मत्स्य आसन है, मार्जरी आसन है। एक्चुअली योग में सिर्फ आसन और प्राणायाम ही नहीं है, बंद मुद्राएं भी हैं। तो हम इनके संग थोड़ा सा अभ्यास उसका भी अगर कर लें, तो जो हमारे इंटरनल रिएक्शंस और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का जो रिएक्शन फंक्शनिंग है

0: प्रॉपर अगर हो गया तो फिर बहुत बेस्ट रहता है। तो कुछ आसन है, थोड़े बहुत कर लें, सूर्य नमस्कार है, पवन मुक्तासन कर लें, पवन मुक्तासन सीरीज नंबर 1, 2, 3 ऐसे 2-3 सीरीज हैं, उत्तान पादासन की सीरीज है, और जैसा मैंने पहले भी बोला सूर्य नमस्कार उसमें कंप्लीट 12 आसन का जो एक स्ट्रेचिंग पोजेज है वो बहुत जबरदस्त लाभदायक है। कुछ थोड़ा सा एक पैकेज टाइप का 10-15 मिनट का भी बना लेंगे ना तो वो हमको कंप्लीट बेनिफिट देगा।
1: ममता जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
0: मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि 24 घंटे में से सिर्फ 45 मिनट ऐसे निकाल लीजिए कि आप योगिक क्रियाएं कर लें, कुछ फिजिकल कर लें, सारी बीमारियां दूर, फिट और फाइन। जैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ऐसे वो 45 मिनट में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, तो मेंटल फिजिकल दोनों शानदार हो जाएगा। जीवन शैली को सुधार लें, जीवन शैली सुधर गई, खाना पीना सुधर गया, तो मतलब मुझे लगता है उससे अच्छा फिटनेस तो कुछ और होगी ही नहीं।
1: इतनी अच्छी और सार्थक जानकारी देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे योग और मोटापा विषय पर भेंटवार्ता। श्रोताओं आज की भेंटवार्ता का संदेश यही है कि मोटापे से घबराने की नहीं, सही दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाने की जरूरत है। तो योग को अपनी जीवन शैली में अपना शामिल करें और यूं ही आगे चलते रहें।

श्रोता, हम बात कर रहे हैं हमारे हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट की, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य और विज्ञान की उन नई तकनीकों की जो हमारे जीवन को सुरक्षित, आसान और बेहतर बना रही हैं। आज की दुनिया में तकनीक सिर्फ हमारे मोबाइल या कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, बल्कि अस्पतालों और हमारे घर में प्रयोग होने वाली मेडिकल उपकरणों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। स्मार्ट हेल्थ डिवाइसेस ने इलाज को तेज, सटीक और सुविधाजनक बनाया है, और जब तकनीक आगे बढ़ती है तो उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी होती है। इसीलिए इन डिवाइसेस की साइबर सिक्योरिटी की जाती है। श्रोताओ, आज अस्पतालों में हार्ट मॉनिटर, इंसुलिन पंप, पेसमेकर, एमआरआई मशीन और कई अन्य उपकरण डिजिटल तकनीक से संचालित होते हैं। इनमें मरीजों की महत्वपूर्ण जानकारी भी जुड़ी रहती है। श्रोताओं, ये उपकरण जब कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़े होते हैं तो उनकी सुरक्षा करने के लिए जो तकनीक उपाय किए जाते हैं उसे साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। या यूं कहें कि जैसे हम अपने घर की सुरक्षा के लिए ताला लगाते हैं, वैसे ही मेडिकल डिवाइसेस और उनसे मरीजों की जो जानकारी है उसे सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं। डिवाइस के सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट कर सुरक्षित पासवर्ड, विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर सुरक्षा परीक्षण से इन डिवाइसेस की सिक्योरिटी की जाती है। श्रोता, अगर आप भी घर में किसी ऐसे स्मार्ट हेल्थ डिवाइस का उपयोग करते हैं तो डिवाइस को समय समय पर अपडेट करते रहें, आधिकारिक ऐप और लिंक का ही प्रयोग करें, क्योंकि जब तकनीक का सही और सुरक्षित उपयोग हो तो उम्मीदें भी नई उड़ान भरती हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, बारिश का मौसम दस्तक दे रहा है। ये मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं स्वास्थ्य के लिए नई चुनौतियां भी लेकर आता है। श्रोताओं, कुछ आदतों को बदलकर हम बारिश में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। साफ पानी, ताजा भोजन, हाथों की स्वच्छता और मच्छरों से बचाव ही इस मौसम में सुरक्षा कवच का काम करता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और स्वस्थ और सुरक्षित रहें। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन को। नमस्कार।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए लोक संगीत के कार्यक्रम में अर्चना खरे से बुंदेली लोकगीत।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे रत्नेश

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।

0: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिर वही दिल लाया हूँ। उस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार है मजरू और संगीत है ओपी नैयर का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद श्री मोदी अपना दौरा संपन्न कर दिल्ली के लिए रवाना हुए। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर परियोजनाओं 440 मेगावाट की सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, पावर परचेज एग्रीमेंट और 1,553 करोड़ 98 लाख रुपए की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यो का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा मंत्री शुक्ला की उपस्थिति में भोपाल

भोपाल में 440 मेगावाट के मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट होगा। उन्होंने बताया कि मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज प्रदेश की पहली सोलर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। इस परियोजना में 2 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट की दर निविदा पर प्राप्त हुई है, जो देश में न्यूनतम

और असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले नौ सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश के आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। अभी तक केवल 15 जिलों तक मानसून पहुंच पाया है, जबकि 40 जिलों में अभी इसकी आमद नहीं हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, मंडला और बालाघाट में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले रविवार को मंदसौर और रतलाम में तेज बारिश हुई, जबकि रतलाम में आधा इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा गुना, श्योपुर, बड़वानी, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन और छतरपुर सहित कई जिलों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से हो चुकी है। अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के दल पहुंच रहे हैं। खंडवा जिले में आमा खुजरी जंगल में वन भूमि पर दोबारा हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए आज सुबह प्रशासन ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया। वन, राजस्व और पुलिस विभाग के करीब 600 अधिकारी कर्मचारी सुबह 7 बजे से 30 जेसीबी मशीनों के साथ कार्रवाई में जुटे हैं। पन्ना पुलिस ने तत्परता निभाते हुए पवई थाना क्षेत्र से अपहृत एक कपड़ा व्यापारी के 20 वर्षीय बेटी को रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों की पहचान कर ली है, जो फिलहाल फरार हैं। खरगोन जिले की बड़वाह के पास चोरल नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने से बीच धारा में फंसे इंदौर के 3 युवकों को स्थानीय पुलिस ने अस्थायी रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन

0: श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशेल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकट के क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा

0: ई व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं, ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष अमीशा।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
4: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है।

0: सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे ये साथी बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूणत, लाबरिया भेरू इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कुणाल, केतन, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेंग बिरक, मीका बिरक, इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है त्रिशूल फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की, गीतकार हैं साहिर और संगीत है खयाम का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगला गीत सुनना चाहते हैं हमारी ये साथी कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली, मीनूराज श्रीमाली, और खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमंद्र, सन्मति पंचोलिया, और धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, काफिर, स्वाति माखीजा, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है। और ये प्यारा सा गीत है ये फिल्म आसपास से, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार हैं आनंद बख्शे, और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगला गीत है फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की और गीत लिखा है मजरों ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और सुनना चाहते हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना प्राची नेमा, राजकोट से मधुसूदन भट्ट आरती पूजा जास्मीन प्रयागराज भट्ट, अमलेश्वर छत्तीसगढ़ से डूमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश ठाकुर तारिणी ठाकुर सूरज ठाकुर सुजला ठाकुर ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत आरडी बर्मन का। और सुनना चाहते हैं बलिया उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, और ये साथी हैं बड़खेरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख जमील मंसूरी और प्रभाकर जोनले, आरती जोनले, ये दो साथी हैं हमारे नांदेड़ महाराष्ट्र से।

आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश भेजी है हमारे इन सभी साथियों ने। ये साथी हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य बक्सर से, और भाटापारा दत्तरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी श्रोता साथी सुनना चाहते हैं आन मिलो सजना असम का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। इसके बाद वे दौरा संपन्न कर दिल्ली रवाना हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस साल के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्रावधान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए टीम पहुंच रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मौसम विभाग ने आज उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में 4 इंच और उससे अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

शाम 5:33 पर और 6:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6 बजे। प्रादेशिक समाचार दर्शन 6:45 पर आप सुनेंगे। और आजकल 6:40 पर

सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा आज रात 8 बजे, 8:15 पर सुनिए फिल्म संगीत, 9:30 पर सुनिए पब्लिक स्पीक जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे,

जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। और रात 10:30 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट से राग यमन कल्याण में ख्याल गायन।

आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत ग्राम सभा आप सुनेंगे 7:21 पर। तो ये थी जानकारी आज शाम की सभा के कार्यक्रमों की।

मीडिया वे 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 3:03 हुए हैं। हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम की सभा में 5 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे अर्चना खरे से देवी गीत।

नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व की विविध संस्कृतियों के सम्मान पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए कहा कि विश्व की विविध संस्कृतियों का सम्मान करने से लोगों के बीच विश्वास और सहयोग की भावना बढ़ती है। उन्होंने कहा कि इससे आपसी समझ और भाईचारे को बढ़ावा भी मिलता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान संत समाज सुधारक कबीरदास की जयंती पर उन्हें नमन किया। डॉ. यादव ने कहा कि संत कबीरदास जी ने सामाजिक कुरीतियों, आडंबर, अंधविश्वास के विरुद्ध जन जागृति की। उनकी अमर कृतियां अनंत काल तक समाज को लोक कल्याण की दिशा देती रहेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितता की अदालत की निगरानी में जांच और फोरेंसिक ऑडिट की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। और मौसम विभाग ने आज उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में 4 इंच तथा उससे अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे के

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवावाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति।

हेलो नमस्कार और गुड इवनिंग दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी को और मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त दिपेश बर्डे और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं के दिलों की वाणी यानी युववाणी। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे विशेष दिवस की जो पृथ्वी के उस हिस्से को समर्पित है जहां प्रकृति की सबसे अद्भुत विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स की, जिसे हर वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले यह जान लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिक्स आखिर होते क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र

उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और यहाँ पूरे वर्ष अपेक्षाकृत अधिक तापमान तथा अच्छी मात्रा में सूर्य प्रकाश मिलता है और भारत का अधिकांश भाग भी इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। दोस्तों, जानेंगे इस दिवस के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां, मगर उससे पहले आपको सुनवाते हैं आज की शाम का पहला गीत फिल्म जन्नत 2 से।

दोस्तों, अभी आपने सुना जावेद अली की आवाज में यह गीत। दोस्तों, इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महत्व, उनकी चुनौतियों और संभावनाओं के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। दोस्तों, यदि हम प्राकृतिक संपदा की बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी की जैव विविधता का खजाना है। दुनिया के लगभग 80% से अधिक पौधे और पशुओं की प्रजातियां सीधे रूप से इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। विश्व के ज्यादातर वर्षा वन, मैंग्रोव वन, प्रवाल भित्तियां और अनेक दुर्लभ जीव जंतु यही पाए जाते हैं। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वन न केवल वन्य जीवों का घर है, बल्कि वे पृथ्वी के ग्रीन लंग्स भी कहे जाते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का महत्व केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है। विश्व की लगभग 40% से अधिक आबादी इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ अनेक भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और जीवन शैलियां देखने को मिलती है। भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और कई अन्य देश इस क्षेत्र का हिस्सा है। दोस्तों, इन क्षेत्रों में कृषि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाय, कॉफी, गन्ना, केला, नारियल, मसाले और चावल जैसी अनेक फसलें उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही बेहतर ढंग से विकसित होती है। भारत के किसानों की आजीविका भी काफी हद तक इसी जलवायु पर निर्भर करती है। दोस्तों, लेकिन जहां संभावनाएं हैं, वहीं चुनौतियां भी कम नहीं है। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर ही देखने को मिल रहा है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, चक्रवातों की बढ़ती तीव्रता, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाएं लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित कर रही है। वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी चिंता का विषय है। यदि हम समय रहते उन चुनौतियों का समाधान न करें तो जैव विविधता और पर्यावरण दोनों को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। दोस्तों, भारत जैसे देश के लिए यह दिवस विशेष महत्व रखता है। हमारे यहाँ पश्चिमी घाट, सुंदरबन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत जैसे क्षेत्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध है। इन क्षेत्रों का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं। तो उत्तर बहुत ही सरल है। दोस्तों, पेड़ लगाए और उनका संरक्षण करें, जल और ऊर्जा की बचत करें, प्लास्टिक के उपयोग को कम करें, स्थानीय और पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा दें, प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं। दोस्तों, ये छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। यदि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की रक्षा करेंगे तो हम पृथ्वी के भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों, प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली ही हमारे सुरक्षित और बेहतर भविष्य का आधार है। चलिए दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं आज की शाम का अगला गीत फिल्म लूडो से।

दोस्तों अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में यह गीत। दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो आज हम सभी के जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुका है, डिजिटल पेमेंट और साइबर सुरक्षा। दोस्तों कुछ वर्ष पहले तक अधिकांश लेन देन नगद राशि के माध्यम से किया जाता था, लेकिन आज तकनीक के विकास और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने हमारे भुगतान करने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। दोस्तों अब किराने की दुकान से सामान खरीदना हो, बिजली का बिल जमा करना हो, मोबाइल रिचार्ज कराना हो, रेल टिकट बुक करना हो या किसी मित्र अथवा परिजन को पैसे भेजने हो, यह सब कुछ सेकंड में हो जाता है। दोस्तों इसी बदलाव को हम डिजिटल पेमेंट के नाम से जानते हैं। डिजिटल पेमेंट का अर्थ है बिना नगद राशि के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान करना। आज मोबाइल फोन के जरिए QR कोड स्कैन करके भुगतान करना आम बात हो गई है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और विभिन्न डिजिटल भुगतान मंचों का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों भारत आज दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां डिजिटल लेन देन सबसे तेजी से बढ़ रहा है। गांवों से लेकर महानगरों तक, छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक, हर कोई डिजिटल भुगतान को अपना रहा है। दोस्तों डिजिटल पेमेंट के अनेक लाभ है। सबसे पहला है सुविधा, अब हमें बड़ी मात्रा में नकदी साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा लाभ है समय की बचत, बैंक की लंबी कतारों में खड़े रहने के बजाय हम घर बैठे ही भुगतान कर सकते हैं। तीसरा लाभ है पारदर्शिता, प्रत्येक लेनदेन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों का हिसाब रखना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त डिजिटल भुगतान से नकदी के प्रबंधन की लागत भी कम हो जाती है और अर्थव्यवस्था को अधिक संगठित बनाने में सहायता मिलती है। चलिए दोस्तों वक्त हो चला है आपको आज की शाम का अगला गीत सुनवाने का, फिल्म एजेंट विनोद से।

लेकिन दोस्तों हर तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी आती है। डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों में भी वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में साइबर सुरक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों साइबर सुरक्षा का अर्थ है इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों पर हमारी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित बनाए रखना। आज साइबर ठग लोगों को धोखा देने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। कभी वह बैंक अधिकारी बनकर फोन करते हैं, कभी लॉटरी या पुरस्कार जीतने का लालच देते हैं, तो कभी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं। दोस्तों कई बार लोगों को ऐसा संदेश भेजा जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपका बैंक खाता बंद होने वाला है या आपका KYC अपडेट नहीं है। घबराकर लोग दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं और अपनी गोपनीय जानकारी साझा कर बैठते हैं। और दोस्तों कुछ मामलों में ठग OTM, OTP, ATM पिन, CVV नंबर या UPI पिन पूछकर लोगों के खातों से पैसे निकाल लेते हैं। दोस्तों यह याद रखना बहुत आवश्यक है कि कोई भी बैंक, सरकारी संस्था या अधिकृत एजेंसी कभी भी फोन, संदेश या ईमेल के माध्यम से आपका OTP, पासवर्ड, ATM पिन या UPI पिन नहीं मांगती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी मांगता है तो यह धोखाधड़ी का संकेत हो सकता है, या मीम की भाषा में कहे तो यह एक रॉन्ग नंबर है। दोस्तों साइबर अपराधों से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां अपनाना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले अपने OTP, पासवर्ड, UPI पिन को पूरी तरह गोपनीय रखें। दूसरा, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक ना करें। तीसरा, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और समय समय पर उसे बदलते रहें। चौथा, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर वित्तीय लेनदेन करने से बचें। और दोस्तों यदि कभी किसी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाए तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और साइबर अपराध हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें। दोस्तों आज भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट ने न केवल हमारे जीवन को आसान बना दिया है बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्रदान की है। लेकिन इस सुविधा का लाभ तभी सुरक्षित रूप से उठाया जा सकता है जब हम साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहे। दोस्तों तकनीक हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम इसका उपयोग समझदारी और सतर्कता के साथ करें। चलिए दोस्तों अब आपको सुनाते हैं आज की शाम का ये अगला गीत।

दोस्तों अब वक्त हो चला है आज की रोजगार सूचना का। दोस्तों दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB द्वारा जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 जून से प्रारंभ हो चुकी है, जो 15 जुलाई तक किए जा सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी DSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको सुनाते हैं आज की शाम का ये आखिरी गीत।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
2: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
3: डीडी डायरेक्ट,
2: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
3: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
2: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
3: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
2: आज ही करें कनेक्ट
3: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
4: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR।

सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाज़ में आइए सुनते हैं दबंग फिल्म का गीत। इरफान कामिल की बोल है और संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक।
1: बदलती आवाज कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: Rotata, rotata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी, लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इंसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिनी और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है।
1: या

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को पुरस्कार प्रदान किए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और एआई से निर्मित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में नीमच में आयोजित कार्यक्रम में 2080 करोड़ रुपए लागत के 500 मेगावाट नीमच और 450 मेगावाट शाजापुर सोलर पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 1553 करोड़ 98 लाख रुपए लागत के उद्योगों और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को सौगात दी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पहले, दूसरे और तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके देश की स्वास्थ्य प्रणाली को काफी मजबूत किया है। श्री नड्डा ने कहा कि नागरिकों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क के पहले बिंदु के रूप में 186,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं और भोपाल के मानस भवन में कल शाम 5 बजे काव्य पाठ और महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें भोपाल के कवि हरिवल्लभ, धूमकेतु मदन मोहन समर और उज्जैन के अशोक भाटी प्रस्तुति देंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम की 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
4: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी।

परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों के लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनी कुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकी पन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से। तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ल्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं ऐसा कोई वर्ल्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब सुनिए आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर और

0: अब से कुछ ही पलों बाद यानी 6:35 पर भजनों पर आधारित कार्यक्रम होगा।
1: कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से। लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र की बोल है और संगीत शंकर जयकिशन का।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म कश्मीर की गली से। मोहम्मद रफी की खूबसूरत आवाज, SH बिहारी के बोल और तर्ज बनाई है OP नैयर ने।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आजकल।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है डिजिटल इंडिया। आलेख अमित कुमार सेन, वाचन स्वर राणा शाहिद।

0: भारत दुनिया का वो देश है जो तेजी से प्रगति कर रहा है और इस प्रगति में उसकी पहचान बन रहा है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इस योजना ने अपने उद्देश्यों को काफी हद तक पूरा किया है। डिजिटल इंडिया जब शुरू हुई तो उसके 3 मुख्य स्तंभ रखे गए। पहला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा डिजिटल साक्षरता और तीसरा है डिजिटल सेवा वितरण। साल 2025 तक के डेटा की बात करें तो डिजिटल इंडिया के जरिए इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की पहुंच में भारी इजाफा हुआ है। साल 2014 में इंटरनेट कनेक्शन जहां 25.15 करोड़ थे तो वहीं साल 2024 में 96.96 करोड़ यानी लगभग 85% की वृद्धि दर्ज की गई। साल 2015 में ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शंस जहां 9.9 करोड़ थे जो कि बढ़कर 2025 में 94.4 करोड़ हो गए। इसमें लगभग 10 गुना वृद्धि देखी गई। इस तरह साल 2025 में कुल इंटरनेट यूजर्स 1.03 अरब थे जो कि भारत की जनसंख्या का 70% है। भारत 5G विस्तार करने में विश्व में सबसे तेज देशों में शामिल है। अब हम डिजिटल भुगतान यानी UPI की बात करें तो अप्रैल 2025 तक 1,867.7 करोड़ लेन देन किया गया जिसका मूल्य 24.77 लाख करोड़ था। भारत विश्व में रियल टाइम ट्रांजैक्शन का 49% हिस्सा रखता है। भारत में डिजिटल पहचान और सेवाएं भी मौजूद हैं। इनमें मुख्य तौर पर आधार, डिजी लॉकर, उमंग और भारत नेट हैं। डिजिटल इंडिया ने फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस गवर्नेंस को बढ़ावा दिया। डेटा कीमतें बहुत कम हुई जिसमें ग्रामीण भारत भी डिजिटल इंडिया से जुड़ा। साल 2026 में डिजिटल इंडिया के जरिए AI और सेमीकंडक्टर क्रांति आई है। भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 की शुरुआत की और नई दिल्ली में इंडिया AI इंपैक्ट समिट जैसे वैश्विक आयोजनों की मेजबानी की। स्वदेशी क्लाउड इकोसिस्टम मेघराज 2.0 का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है जिसके तहत 2300 से अधिक सरकारी विभाग क्लाउड सेवाओं के माध्यम से जुड़े हैं। डिजी लॉकर से 67 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं को 967 करोड़ से ज्यादा डिजिटल दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं। वहीं उमंग ऐप पर 2400 से अधिक सरकारी सेवाएं नागरिकों को घर बैठे मिल रही हैं। नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती से लागू किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6.39 करोड़ से अधिक ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जा चुका है। UPI का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI की सफलता का एक प्रमुख उदाहरण है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और उसकी अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के जरिए UPI को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास तेजी से चल रहा है। साल 2023 से सिंगापुर पे नाउ UPI लिंकेज रियल टाइम P2P ट्रांसफर शुरू हुआ है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2029 तक डिजिटल इंडिया का विस्तार 20 से ज्यादा देशों तक किया जाए। दुनिया के कई देश भारत का UPI जैसा सिस्टम अपनाने के लिए भारत से सहयोग ले रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं है बल्कि यह आधुनिक भारत के निर्माण का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। इस तकनीक ने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। इस तरह डिजिटल इंडिया आज भारत सरकार की मुख्य और सफल योजना में शामिल है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, विषय था डिजिटल इंडिया।

आलेख श्री अमित कुमार सेन का और वाचन स्वर राणा शाहिद का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है प्रादेशिक समाचार दर्शन का।

0: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट, और इस बार का प्रादेशिक समाचार दर्शन केंद्रित है नशा मुक्त भारत अभियान पर, जो कि पूरे प्रदेश में 17 से 26 जून तक चलाया गया। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसकी पहली रिपोर्ट है रतलाम जिले से, जहां पर नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन दो तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। पहली कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार पर कड़े प्रहार के रूप में है, तो दूसरी कार्रवाई जन जागरूकता की है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी रतलाम संवाददाता अदिति मिश्रा।
1: नशे से दूरी है जरूरी। रतलाम जिले में नशा मुक्ति अभियान व्यापक स्तर पर संचालित हो रहा है। अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन द्वारा दो तरफा कार्रवाई की जा रही है। रतलाम एसपी अमित कुमार के निर्देशन में रतलाम जिले में लगातार नशे का व्यापार करने वालों के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाइयां की जा रही हैं। हाल ही में रतलाम पुलिस ने एमडी स्मैक और अन्य ड्रग्स को पकड़कर भी बड़ी खेप हासिल की है। इसके साथ ही नशे का कारोबार करने वालों के अन्य ठिकानों पर भी लगातार पुलिस कार्रवाई हो रही है। दूसरी ओर कलेक्टर मीशा सिंह के नेतृत्व में पूरे जिले में नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान भी चल रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अन्य विभागों द्वारा स्कूल और कॉलेजों में जाकर भी युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तीसरे स्तर पर रतलाम के मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र का संचालन भी प्रारंभ किया जा चुका है। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों के मार्गदर्शन में अलग अलग थेरेपी, जिसमें कि मेडिकल के साथ ही योगा और काउंसलिंग के जरिए युवाओं को नशे की लत से बाहर आने के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है। रतलाम में चल रहे नशा मुक्ति अभियान में हर स्तर पर युवाओं को नशे से दूर रखने, इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताने और किसी भी कारण गलत लत में पड़ चुके युवाओं को वापस सकुशल अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी पर्याप्त मदद दी जा रही है। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में हम रुक कर रहे हैं सीहोर जिले का, जहां जिला सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान को उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
2: सीहोर जिले में जिला सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा विरोधी सप्ताह मनाया गया। इस दौरान जिले भर में 17 जून से 26 जून तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता रैली एवं जन जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। इस बार जिले में इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान पर आधारित रही। जिले के विभिन्न स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों में नशा मुक्ति के विरुद्ध जन जागरण के लिए कई प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें चित्रकला, वाद विवाद, निबंध, प्रश्न पंच और अन्य प्रकार की प्रतियोगिताएं शामिल रही हैं। ग्राम पंचायतों में भी सामूहिक शपथ दिलवाई गई और नशे के विरुद्ध अलग जगाने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुए। अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आवासीय स्कूल से जिला स्तरीय जन जागरूकता रैली प्रारंभ हुई और पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में इस रैली का समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर युवाओं को नशे की लत से दूर कर स्वस्थ, सुरक्षित एवं सशक्त समाज का निर्माण करना है। नशे के विरुद्ध जन भागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति है। इस अवसर पर अतिथियों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर सभी को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित सप्ताह में विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं

0: अनेक जन जागरूकता गतिविधियों के विजेताओं को इस समारोह में सम्मानित किया गया। रैली में ऑक्सफोर्ड स्कूल के बैंड द्वारा आकर्षक एवं प्रेरणादायी प्रस्तुति दी गई। इस बारे में जिला सामाजिक न्याय विभाग के सहायक संचालक महेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि
1: सीहोर जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 17 जून से 26 जून

0: तक पूरे सप्ताह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नशा मुक्ति के विरुद्ध प्रभावी जन जागृति के लिए विभिन्न आयोजन उत्साह के वातावरण में किए गए हैं। इस बार जिले में इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान पर आधारित रही है। जिले के विभिन्न स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं में नशा मुक्ति के विरुद्ध जन जागरण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें चित्रकला, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध, प्रश्न मंच, नुक्कड़ नाटक और इस प्रकार के अनेक प्रतियोगिताएं शामिल रही हैं। ग्राम पंचायतों में भी सामूहिक शपथ दिलाई गई और नशा के विरुद्ध अलख जगाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। इस अवसर पर आवासीय स्कूल से नशे के विरुद्ध जन जागरण के लिए एक विशाल रैली निकाली गई है और इस रैली का समापन पीजी कॉलेज में किया गया है और जो एक सप्ताह में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उसका पुरस्कार वितरण भी संपन्न हुआ है।
1: सीहोर जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं प्रदीप सिंह चौहान।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में रायसेन में चलाए गए नशा मुक्त भारत अभियान पर जानकारी दे रहे हैं हमारे रायसेन संवाददाता विनीत माहेश्वरी।
3: अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर रायसेन जिले में नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय विभाग के सहयोग से अजंता ललित कला समाज कल्याण समिति द्वारा 17 जून 2026 से 26 जून 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत नशा मुक्ति प्रचार रथ ने गांवों का भ्रमण किया, जहां कलाकारों ने स्थानीय लोकगीतों के माध्यम से ग्रामीणों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। सलामतपुर के राजीव नगर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भारत सरकार के ASO सेलेन पायल ने मादक पदार्थों के वैश्विक खतरों के प्रति संचेत किया। वहीं सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक मनोज बाथम ने युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए समाज के हर वर्ग के आगे आने की अपील की। संस्था की अध्यक्ष इंदिरा शर्मा ने कफ सिरप की बिना पर्ची बिक्री पर रोक लगाने के सरकार के निर्णय की सराहना की। इस दौरान राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर वेद प्रकाश शर्मा ने उत्कर्ष नशा मुक्ति केंद्र में मिलने वाले निःशुल्क उपचार की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उपस्थित ग्रामीणों को नशा मुक्ति की सामूहिक शपथ भी दिलवाई। सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक मनोज बाथम ने बताया कि
4: नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत रायसेन जिले में सभी महाविद्यालयों में तथा विद्यालयों में युवाओं को जन जागृति कार्यक्रम के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया, साथ ही निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली इत्यादि नशा से आधारित श्रृंखला में प्रथम आने वाले सभी युवाओं को दिनांक 1 जुलाई को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी।
2: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सतना जिले में जिला प्रशासन और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में कई जगह पर नुक्कड़ नाटक सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सतना संवाददाता लाल बहादुर तिवारी।
5: सतना जिले में जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में जगह जगह नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक सहित अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों ने अपने सशक्त अभिनय एवं संवादों के माध्यम से समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का सराहनीय प्रयास किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उनके परिवार और पूरे समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। नशे के कारण पारिवारिक कलह, सामाजिक विघटन और सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसमें असमय मृत्यु तक हो सकती है। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित किया गया। उपस्थित नागरिकों ने नशा मुक्ति समाज के निर्माण में अपना सहयोग देने का भी संकल्प लिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम रुख करते हैं हीरो के लिए विश्व प्रसिद्ध पन्ना जिले का, जहां पर युवाओं और आम नागरिकों को नशे की लत से बचाने तथा एक स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के निर्माण के उद्देश्य से नशा मुक्त सप्ताह चलाया गया। इस बारे में और जानकारी हमारे पन्ना संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा से।
6: हीरो के लिए विश्व प्रसिद्ध पन्ना जिले में युवाओं और आम नागरिकों को नशे की लत से बचाने तथा एक स्वस्थ और समृद्ध समाज के निर्माण के उद्देश्य से 17 से 26 जून तक विशेष नशा मुक्ति सप्ताह अभियान चलाया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते

0: मादक पदार्थों के सेवन पर अंकुश लगाने और प्रभावी व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाना इस अभियान का मुख्य एजेंडा रहा। इसमें प्रशासन, शासन और सामाजिक संस्थाओं के साझा प्रयासों से नशा मुक्त पन्ना, समृद्ध पन्ना का यह संकल्प अब पूरी दृढ़ता के साथ धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है। पन्ना कलेक्टर उषा परमार एवं पुलिस कप्तान निवेदिता नायडू के कुशल नेतृत्व में इस अभियान को गति मिली है। जिले की लक्षित ग्राम पंचायतों में जागरूकता बैठकों का दौर जारी है। स्कूल, कॉलेज और ग्रामीण चौपालों के माध्यम से युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया जा रहा है। इस अभियान के तहत पन्ना जिले की आदर्श ग्राम पंचायत शाहनगर में
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
1: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

खुशखबरी। जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षेण, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशेल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेशन को सुगम बनाएगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स CCI के प्रतिनिधि मंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई है थी। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सुलिंग ली यांग से हार का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम हम आपको बता दें। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसे हम आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत करेंगे। रात्रि 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में 8:15 पर आनंदी जी का फिल्म संगीत का। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10:00 सुनेगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। और अब बारी है हमारे कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से सुबह 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमय सवेरा आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। 9:15 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेगा रश्मि ससोड़े के गाए गीत और भजन। 9:30 पर आप सुनेगा शब्द सागर कार्यक्रम में महेश अग्रवाल का काव्य पाठ, साथ ही होगी व्यंग वार्ता, विषय रहेगा नींद, वार्ताकार होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सक्सेना। 9:50 हर रोज की तरह आप सुनेंगे सुबह 10:00। फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर आप सुन पाएंगे 10:05 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर आप सुनेगा साक्षी पंडोले का ख्याल गायन, राग होगा नट भैरव। 11:00 के प्रसारण में 11:00 हम प्रसारित करेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। दिन में 12:00 और 2:30 पर पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी का 12वां भाग हम प्रसारित करेंगे। 1:00 होगा महिला कार्यक्रम, 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम और 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं दिन में 2:00 और शाम 5:33 पर। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। छह बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:30 पर ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच लंदन में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच के पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है। नीमच और शाजापुर सोलर पार्क का किया उद्घाटन। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। यूसीसी समेत विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की दी जानकारी। और प्रदेश के 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, 40 जिलों में अभी मॉनसून का इंतजार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह बंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों भी मान्यता देते हैं। केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत दुनिया का दूसरा देश है जहां रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि रेलवे को यहां से बिजली मिल रही है। श्री जोशी नीमच में आयोजित ऊर्जा पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में सिंगल क्लिक के माध्यम से 2,080 करोड़ रुपए लागत के 500 मेगावाट नीमच और 450 मेगावाट शाजापुर सोलर पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 1,553 करोड़ 98 लाख रुपए लागत के उद्योगों और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री ने यहां कहा कि मध्यप्रदेश हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है।
2: पावर सेक्टर में मध्य प्रदेश ग्रीन पावर का, हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है। इसके लिए मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी को और मैं शुक्ला जी को भी बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, क्योंकि ये हर महीने आके मुझे मिलते हैं। जो भी हमारा स्कीम है, मुख्यमंत्री नाम से मुझे बोलते हैं, ज्यादा दे दो, ज्यादा दे दो, ज्यादा दे दो। लेकिन प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश के ऊपर ज्यादा है, इसलिए हम कैबिनेट में अप्रूवल करके देते ही रहते हैं।
0: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सोलर पावर यूनिट स्थापित करने वाली कंपनियों के पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने यहां विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे सस्ती बिजली अब नीमच में मिलेगी।

की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही, इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। अगले 50 वर्ष में ये संबंध नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि से परिभाषित

0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल से लोकभवन पहुंचकर सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्यपाल को मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने को लेकर 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त होने, UCC को लेकर मिल रहे व्यापक जन समर्थन और इस संदर्भ में राज्य सरकार की आगामी कार्ययोजना से भी अवगत कराया। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के सफल क्रियान्वयन, गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा में प्रस्तावित शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों, 4 कृषि उपजों को हाल ही में मिले GI टैग से संबंधित किसानों को मिलने वाले लाभ, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार, MSME और स्टार्टअप को प्रोत्साहन, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन से जुड़े विभिन्न प्रयासों, सरकार को मिली उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। छतरपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक आज जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार ने की। बैठक में प्रमुख रूप से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, वेयर हाउसिंग और नागरिक आपूर्ति निगम से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। पन्ना जिले में एक बार फिर एक आदिवासी किसान परिवार की किस्मत बदली है। यहां अहिर गवां क्षेत्र के एक निजी भूमि पर संचालित खदान से इस परिवार को 11.19 कैरेट का बेशकीमती जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस परिवार को करीब 2 साल पहले भी 19.22 कैरेट का विशाल हीरा मिला था, जो नीलामी में 93 लाख रुपए में बिका था। हीरा कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि मजदूर राकेश गौर ने इसी साल अप्रैल में पट्टा बनवाकर अपने 3 भाइयों दारुश के साथ मिलकर खदान लगाई थी। करीब 2 महीने पहले की कड़ी मेहनत के बाद सोमवार को उन्हें चमचमाता हीरा हाथ लगा, जिसे उन्होंने तुरंत सरकारी हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। अभी तक केवल 15 जिलों तक मॉनसून पहुंच पाया है, जबकि 40 जिलों में अब भी इसकी आमद नहीं हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में शाम में तेज बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खंडवा जिले में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि गुड़ी रेंज के ग्राम आमा खुजरी में 105 हेक्टेयर वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई का जायजा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ग्राम गुर्जर बर्डिया में लगभग 333 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गुर्जर बर्डिया महादेव मंदिर मार्ग, आरोग्यम उप स्वास्थ्य केंद्र और राधा कृष्ण गौशाला का लोकार्पण किया। जनजातीय कार्य विभाग ने छात्रावास और आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। खंडवा जिले की 7 शासकीय ITI संस्थाओं में 1480 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। पर्यावरण और वनों के संरक्षण तथा हरे क्षेत्र के विस्तार हेतु धार वन मंडल के अंतर्गत वन मंडल स्तरीय रूट शूट वृक्षारोपण तकनीक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने आज आयोजित TL बैठक में वर्षा काल में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। मैहर में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सेफ क्लिक अभियान के तहत जागरूकता रथ रवाना किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत।

0: फतेह फतेह पुराने नोट को
1: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा।
0: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
1: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान। चौपाल में बैठे और हमारो चौपाल कार्यक्रम सुनवे बारे सभी भैया बहन काजे चंदा बहन की राम राम। भैया देखो, अपने आस पास ढेर सारे पेड़ पौधा होते हैं जो अपन ने माँ प्रकृति ने भेंट में दे हैं। अपन बिनको खूब उपभोग सोई करत हैं। अपने जीवन से जुड़ी हर जरूरी चीज के लाने अपन बिन पे निर्भर रहते हैं। फल फूल होए, औषधियाँ होए, इमारती लकड़ी, चलाऊ लकड़ी और भी मुलक देखो जन वनस्पतियाँ हैं बिन के संगे अपन जीवन के लाने सब में महत्वपूर्ण जो होते हैं प्राणवायु ऑक्सीजन से अपन ने पेड़ पौधा से मिलते हैं। यानी जे अतिशोक्ति भी अगर नहीं होगी कि अपन जो पूरा पर्यावरण है जहाँ पे निर्भर होते हैं। और भैया देखो, जैसे अपन खां अतिरिक्त आमदनी भी मिल जाते हैं। अब देखो, पर्यावरण की सुरक्षा की बात तो हो गई जो बहुत महत्वपूर्ण है। सो हम तो भैया हमेशा अपन से जो ही कहेंगे कि अपन खेती बाड़ी करते हैं तो अपन खेतन की मेड़ मेड़ पर जितने भी अपन ने उचित जगह दिखाए बिते अपन ने पेड़ जरूर लगाना चाहिए। जहाँ में अपन जौन नीम है, बरगद है, शीशम है, आम पीपल कोनो भी पेड़ अपन लगा सकते हैं। एक पेड़ की और बात करें तो जैसे सहजना को पेड़ होते हैं तो जाए भी अपन लगाएं भैया जाको तो जो समझ लो हर हिस्सा पेड़ को काम आते हैं। जाकि फलियां विटामिन से भरपूर होते हैं, पत्तियों की सब्जी बनाते हैं तो स्वास्थ्य के लाने भी जो मुलक लाभकारी है। ऐसे ही जितने भी जो पेड़ पौधा हैं ये सब कछु न कछु लाभ से भरे होते हैं। सो अपन ने जिनके लाने जरूर लगाना चाहिए। अब बात करते हैं भैया कि जैसे मान लो जिन भैया ने जो अपने नए पेड़ पौधा लगाए भाई हैं बिन के लाने भैया लगा लो, अपन ने बाको ध्यान रखने हैं। बिन की सुरक्षा को काम जोन होते वो बहुत महत्वपूर्ण होते। सो सब में पहले तो देखो लगाते टाइम ही सही तरीका से बिन के लाने लगाना चाहिए। गड्ढा में अपन जोन अपन देखो जब गड्ढा अपन खोद आते हैं तो सही जोन बाको नियम होते कि कितने बड़ो अपन ने गड्ढा बनाना चाहिए बा हिसाब से अपन वही अनुपात में बाको अपन ने खोदना चाहिए। बाकी बाद अपन बा में जौन खाद देते हैं दीमक से बचाव के लाने दवा भी डालो, अच्छी खाद भी डालो और पौधा भी भैया अपन अच्छी जगह से लेके आओ, अच्छो पौधा लेके आओ। संगे संगे जब पौधा अपन लगा दे बाकी बाद बाकी सुरक्षा को अपन ने जैसे ऐसे इंतजाम करना हो जैसे भैया बाकी आगे घेरा बना दो, बाड़ लगा दो। ऐसा नहीं हो कि अपन ने बड़ो पौधा लगाओ बाकी बाद वो कौन जानवर खा गओ या कोई नुकसान पहुँचा गओ। तो ऐसे में भैया अपन ने जौन खेत है बगीचा है आपके कहते हैं कि जैसे स्थिति है बा हिसाब से बाकी सुरक्षा को अपन इंतजाम करना चाहिए कि कोनो बाय नुकसान न पहुंचाए। संगे संगे टाइम पे पानी दियो जैसे जिस पौधे के लाने जैसे जरूरत हो बा हिसाब से ऐसे सर्दी गर्मी से बचाना है। वैसे देखो हम जानते हैं कि आप और हैं जा काम अच्छे से बखूबी करत हो तो। और एक बात कहेंगे कि जैसे जल निकासी की भी अपन ने व्यवस्था रखनी है। ऐसा नहीं हो कि अपन ने नए पेड़ पौधा लगाए हैं और पे जल भराव की स्थिति बन जाए तो जा बात बिल्कुल ध्यान रखने। कुल मिला के हमारे कहवे को मतलब यही है कि अगर अपन पेड़ पौधन की प्रारंभिक अवस्था में सुरक्षा रखेंगे तो फिर जरूर वे बड़े होंगे और भैया अपन ने फल फूल छाया शुद्ध वायु सब कछु अपन ने भी देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जा पे जरूर ध्यान रखेंगे और खूब पेड़ पौधा लगाएंगे और दूसरन का

जसोई जा के लाने जरूर प्रोत्साहित करेंगे। और भैया हम तुझे कहते जो अपने ये पेड़ पौधा हैं, अपने वृक्ष हैं, अपनी प्रकृति है, जा बहुत जरूरी है। कैसे के देखो कछु पंक्तियां हमें जाके याद आ रही, वृक्ष न होते दुनिया में तो हरियाली फैलाता कौन, वृक्ष न होते तो हंस हंस के सुंदर फूल खिलाता कौन, वृक्ष न होते तो इस जग में मीठे फल खिलाता कौन, वृक्ष न होते तो धरती पे शुद्ध वायु बहाता कौन, वृक्ष न होते तो धरती पे ठंडी छाया देता कौन, वृक्ष न होते तो बारिश को खींच खींच कर लाता कौन। तो भैया देखो आप करो जिन सुंदर पंक्तियों पे विचार और हम आपके लाने बहुत ही नौनो सो सुंदर सो प्यारो सो लोगी सुनवा देते। और जाए देखो गाँव है विष्णु पटेरिया और इनके साथियों ने, तो चलो मिलके अपन आनंद लेते हैं जय लोकगीत को।

सो भैया देखो कितने एक अच्छो नौनो सुजी लोकगीत हतो और जाय गाय रहे हते विष्णु पटेरिया और बिनके साथ ही भैया बड़े भैया स्वादिष्ट जी रसगुल्ला हते। पर ऐसा नहीं है कि कौनों भी चीज़ कितने कई स्वादिष्ट हो, अपन ने बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खानो है। तो ध्यान रखनो है कि अपन जिन बातन को ध्यान रखे कि खावे पीवे को ध्यान रखनो हमेशा बहुत ज़रूरी होते। और देखो भैया अपन और भैया खेती बाड़ी को काम करते हैं और खेती बाड़ी में अब अपन जैसे बात कर रहे थे कि पेड़ पौधा लगाते हैं, तो कछु भैया पेड़ पौधा लगा रहे, पारंपरिक फसलें उगाते हैं, कछु भैया हमारे सब्जी भाजी भी करते हैं, तो कछु फूलन की व्यावसायिक खेती करके लाभ सोई लेते हैं। पर भैया आज हम आपके लाने बताते हैं कि अगर आप मशरूम को उत्पादन करेंगे तो जैसे भी अच्छी अतिरिक्त आमदनी अपन का मिल सकत है। जी समझ लियो कि परंपरागत खेती के संगे मशरूम की खेती करके अपन दुगनो लाभ कमा सकते हैं। भैया मशरूम को उपयोग देखो भोजन और औषधि दो ही रूपन में करो जाते हैं। जामे का है कि बहुत ही कम वसा होते हैं, सो जो अपन हृदय है व संबंधी रोगन के लाने भी उपयोग यानी कि बहुत ही अच्छे होते हैं। भैया पहले देखो जाको उत्पादन कछु प्रदेशन तक ही सीमित हतो, पर अब जाए सब क्षेत्रन में उगाओ जा सकत है। मशरूम एक जौन होते है वो होते फफूंद होते जे खावे में बड़े स्वादिष्ट होते, पर देखो जाके कछु प्रजातिन का जे खावे में इस्तेमाल करो जाते जैसे कि सफ़ेद बटन, ढींगरी, दूधिया, ये सब जातियाँ अपन खा सकत प्रजातियाँ जहाँ में प्रोटीन की भैया बहुत ही अच्छी मात्रा होते है, संगे संगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मिनरल और आयरन सुजा में होते। भैया विदेशी व्यापार में मशरूम की मांग दिन पे दिना बढ़ जा रही है और जब देखो मांग बढ़ेगी तो अगर अपन जाको उत्पादन करेंगे तो अपन ने अच्छा लाभ होएगा। और देखो जो ये मशरूम है जाको उत्पादन के लाने अलग अलग और निश्चित तापमान और नमी की भी जरूरत होती है। सामान्यतः 8 से 9 किलोग्राम मशरूम प्रति वर्ग मीटर में पैदा होता है और 100 किलोग्राम कंपोस्ट से 12 किलोग्राम मशरूम अपन खां आसानी से मिल जाते हैं। भैया मशरूम का उत्पादन अच्छी कंपोस्ट खाद और अच्छे बीज पे भी निर्भर करते हैं, तो जब बात भी अपन ने ध्यान रखने हैं। सो कंपोस्ट बनाते टाइम जो विशेष सावधानी जरूर रखो, कछु भूल चूक होवे पे या कीड़ा बीमारी होवे पे जाकि फसल पूरी तरह या आंशिक रूप से खराब भी हो सकते है। सो भैया जा बात को भी हमेशा ख्याल रखना है जाकि खेती के बारे में और अपन ज़्यादा अच्छे से जानकारी अपने जो पास के कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, अपने आसपास कृषि अधिकारी हैं जिनके पास जाके जिनसे अपन समझ के भी जाके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सो ये जो मशरूम का उत्पादन है जो बहुत ही लाभ को है, तो आप सोई जाए जरूर करो और अपने आसपास भी लोगों के लाने जाके बारे में जरूर बताओ। और भैया देखो अब हम का सोच रहे हैं कि काय नहीं आपको कोनो जानकारी सुनवाई जाए, तो देखो आज हम जो ये भेंटवार्ता लेके आए हुए हैं जी को विषय है दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु सलाह, जहाँ में अपन खान जानकारी दे रहे डॉक्टर भगवती प्रसाद यादव और जिनसे बता रहे भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल और जी हम

0: आपके लाने पुनः सुनवा रहे हैं। तो भैया चलो मिलके सुनाते हैं अपन।
1: ग्रामीण श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि विदित है, तरह तरह की जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आज इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भगवती प्रसाद यादव। आप पशु चिकित्सा अधिकारी हैं लेकिन वर्तमान में आप उपसंचालक पशु विभाग के तौर पर जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। उनका हम सभी सुनने वालों के माध्यम स्वागत करते हैं। नमस्कार।
2: नमस्ते।
1: और जो बातचीत का विषय है वो है दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु सलाह। चूंकि हमारा किसान सिर्फ खेती ही नहीं करता है, खेती के अलावा आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरह के दूसरे व्यवसाय भी जो खेती से मिलते जुलते हैं वो करता है, जैसे जानवरों को भी रखता है, खासतौर पर दुधारू जानवरों को रखता है। तो दुधारू पशुओं से सिर्फ एक ही फायदा है, वो है दूध।
2: सही बात।
1: तो दुग्ध उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय पर थोड़ा सा कुछ बताएं।
2: हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है ये कि हमारे ज़िले में पशुओं की संख्या जो है दुधारू पशुओं की काफ़ी है, लेकिन सारे जो पशु हैं हमारे पशुपालकों के पास भी दूध कम देते हैं, ऐसी हमको पशुपालकों की तरफ से शिकायतें मिलती हैं। तो इस संबंध में ये बताना चाहूँगा मैं हमारे पशुपालकों को कि देखिए पशु जो दूध देता है वो दो तीन बातों पर ध्यान रखने के बाद ही हम ये मान सकते हैं कि ये पशु दुधारू है और दूध क्यों कम दे रहा है। पहली चीज़ ये होती है कि हम उसको जो खिला रहे हैं वो कितना खिला रहे हैं, दूसरा वो रहने का जो स्थान है उसका वो कैसा है, और तीसरा कि उसका जो दूध देने की जो क्षमता है वो कितने दिनों की है, उसको ब्याए हुए कितने दिन हो गए हैं। इन बातों को ध्यान में रख के अगर हमारा पशुपालक उनको पाल रहा है तो मेरे ख्याल से उसको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि उसको खाने पीने के बारे में क्या होना चाहिए, तो ब्याने के पशु के ब्याने के दिन से 10 दिन तक उसको ऐसा चारा दिया जाता है जो उसको पचने में दिक्कत ना हो और उसमें एनर्जी ऊर्जा ज़्यादा हो। ऊर्जा ज़्यादा सा मतलब जैसा है कि कई बार हमारे किसान भाई उनको बाजरा का दलिया खिलाते हैं, गुड़ देते हैं, मेथी देते हैं, शतावरी देख वो होती है जड़ी बूटी वो मिला के देते हैं, तो इसको ज़रूर दें कम से कम 10 दिन, ब्याने के 10 दिन तक। ब्याने के 10 दिन के बाद में उसके शरीर का जो गर्भाशय होता है जहाँ से बच्चा की जन्म होता है वो उसकी हीलिंग हो जाती है और वो परिपूर्ण हो जाता है। इसके बाद उसको नॉर्मल डाइट जो छानी बनती है वो खिला सकते हैं और इसके बाद में उसको साथ में कंसंट्रेट की जो बात आ रही है, क्योंकि दूध की जो ऊर्जा है उतनी ऊर्जा से आधी ऊर्जा उसके शरीर में हमको देनी पड़ेगी। जैसे कि मान के चलो किसी पशु की दूध उत्पादन क्षमता 8 लीटर है, कोई भैंस ब्याई है वो 8 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है, तो उसको कम से कम उसको 4 किलो हम उसको ऐसा राशन देंगे जो कंसंट्रेट हो, पशु आहार के रूप में दें, या तो वो पीना हो या उसके साथ में कुछ चुनी हो या उसके साथ में कुछ अपने दाने हो, मक्का या जो भी बाजरा है, तो ये 4 किलो का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा तो आपका पशु दूध कम नहीं देगा, दुधारू पशु दूध बढ़ता चला जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जो पीरियड होता है दूध देने की, जो पीरियड को समय कहते हैं, वो ब्याने के 8 महीने तक ही रहता है। जैसे पशु ब्याया जनवरी में तो वो अगस्त के महीने तक ही दूध देगा, 8वें महीने तक देगा, और 8वें महीने के बाद में भुरभुर दूध देना बंद कर देगा। हमारे किसान भाइयों की जनरली यही शिकायत रहती है कि साहब दूध देना बंद हो गया। जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये ब्याई कब, तो वो बताते हैं साहब ये तो 8-9 महीने हो गए, तो वो दूध अब आपको नहीं देगा। यदि आप ज़बरदस्ती दूध लोगे तो फिर वो उसको प्रजनन क्षमता उसकी कम होगी और उसको आने वाला समय उसका जो रहेगा, अगला जो दूध देने का काल जो आएगा वो उसमें विलम्ब होगा, ब्याने में और उसके गर्मी पे आने में उसको दिक्कत होगी। तो इस तरह से एक तो ये खाने वाली, दूसरी अब सर्दी का मौसम चल रहा है तो ऐसी स्थिति में उनका रहने का स्थान कैसा है, वहाँ हमारे किसान भाई कई बार चूक कर रहे हैं। जैसे कि उनका रहने का स्थान है वहाँ ठंडी हवा तो नहीं आती, क्या उनके रहने के घर में जो रोशनी के वो बने हुए हैं वहाँ पर क्या प्रॉपर धूप आने की बात है या नहीं। यदि धूप नहीं आती है दिन में तो वो उसमें गलन आएगी और सीलन बैठेगी और उसको जो जीवाणु पैदा होंगे वो बैठने में उसको परेशानी करेंगे और पशु हमारा दूध नहीं देगा। तो उनके रहने का जो स्थान है जो भी बनाया है आपने कच्चा है, तो वहाँ कम से कम रोशनी आए दिन में सूर्य की, और शाम को उसमें हवाएं ठंडी ना आए, यदि हो सके तो उसमें कर्टेंस टाट के या जो भी अपने पास साधन हो पुआल वगैरह से उनके घर को ढक के रखें और उनके बैठने की जगह पर गर्मी रहे कि सीलन ना है, क्योंकि रात को पशु पेशाब करता है, रात तब बड़ी हो गई है, तो ऐसे में उनके पेशाब की स्थान जो रहती है या तो वहाँ से नाली बनी हो तो उसमें पहुँच जाए, और नहीं तो आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि वहाँ पर राख वगैरह डाल के उनकी सूखी जगह रखें जिससे वो आराम से रात को आराम कर सके और सुबह वो आपको अच्छे से दूध दे। पशु यदि आराम करेगा और अच्छा खाएगा तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं आएगी हमारे पशुपालक भाइयों की उसका दूध कम हो, तो इस तरह से आप पालें।
1: ये तो आपने

0: भैंस से शुरुआत की। अब दुधारू पशु में बकरी भी होती है, भेड़ भी लोग पाल रहे हैं और गाय भी है,
1: जी,
0: तो इन तीन के संग भी यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि इनके साथ कुछ बदलाव हमें करने पड़ेंगे?
1: लगभग तो ये प्रक्रिया तीनों के साथ भी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा बकरी के साथ थोड़ा अलग मामला है। बकरी का क्या है कि छोटा पशु है और ये पशु रात को अपना गीलापन बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक बार बफेलो भैंस के कमरे में अगर गीलापन है तो वो सहन कर जाता है, उसमें क्षमता है। गाय भी नहीं करेगी गीलापन और बकरी तो बिल्कुल नहीं करेगी। यदि बकरी का वो जो घर ग्रह है वो अगर गीला है तो बकरी बीमार हो जाएगी, दूध देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
0: और भेड़?
1: भेड़ के केसेस में भी बकरी जैसी बात है, भेड़ भी सूखा ही पसंद
0: करती है।
1: यानी
0: भेड़ और बकरी एक ही प्रजाति से जुड़े हुए
1: हैं?
0: हाँ,
1: एक ही प्रजाति है जी,
0: इसलिए बदलाव है।
1: इसलिए
0: और खान पान, जैसे आपने भैंस के लिए बताया कि 10 दिन उसे ब्याहने के बाद विशेष आहार देना चाहिए, तो गाय के लिए भी यही प्रबंध?
1: हाँ, गाय के लिए भी यही रहेगा कि उसको ब्याहने के कम से कम 10 दिन तक
0: एक्स्ट्रा डाइट
1: जिससे उसके शरीर की जो कमजोरी हुई है उसको वो दूर हो जाए, और उसमें आने आने वाला समय उसके लिए फिर दूध देने का जो समय बनेगा वो ज्यादा पौष्टिक दूध देगी, अच्छे से दे पाएगी।
0: आपने अपनी बातचीत में बताया कि लगभग जानवर ब्याहने के 8 माह तक
1: दूध देता है,
0: उसके बाद फिर वो तब तक नहीं देगा जब तक दोबारा से बच्चा
1: नहीं आ जाएगा,
0: जाएगा।
1: बिल्कुल सही बात
0: तो
1: है।
0: ये गैप 8 माह के बाद लगभग कितना और हो सकता है?
1: ये वैसे लगभग इसका 8 माह 4 माह का जो गैप रहता है, 8वें माह में उसके पेट में बच्चा आ चुका होता है। थोड़ा सा इसमें एक गणित है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि देखिए होता क्या है कि पशु जब ब्याहता है और ब्याहने के 120 दिन मतलब 4 से 5 महीने, 120 दिन और 150 दिन, तो 4 से 5 महीने के बाद पशु गर्मी पे पताना शुरू कर देता है। और वो पशु जब गर्मी पे आता है इसका मतलब ये होता है कि उसके शरीर की आवश्यकता है कि वो अब ज्ञापन होना चाहिए, और हमारे पशुपालक जो बुद्धिमान है और इस बात को समझ रहे हैं वो उसको ज्ञापन करा लेते हैं। अब 5वें महीने में तो ज्ञापन हो गया और उसके पेट में बच्चा पलना शुरू हो गया, और हमने अभी बताया कि 8वें महीने तक दूध लेना है, तो उसके पेट में जब 3-4 महीने का बच्चा हो गया उस समय से उसका दूध देना अपन बंद कर देंगे, जिससे वो बच्चा अंदर जो पल रहा है उसको पूरी ऊर्जा मिलेगी, उसको कैल्शियम की जरूरत होगी जो मिलेगी, और वो बच्चा अच्छे से फिर बड़ा होगा और ब्याएगा। और इस दौरान जो 4 महीने अपन उसको गैप दे रहे हैं उसमें वो अपने शरीर को तैयार करता है अगले दूध उत्पादन के लिए।
0: तो जानवर का यानी कि भैंस का और गाय का प्रजनन काल कितना होता है? जैसे इंसानों में 9 माह होता है, इस तरह से इनमें कितना होता है?
1: हाँ, इनमें जो गाय में वो तो 9 माह नहीं होता है, बल्कि इसमें भैंस में थोड़ा सा ज्यादा होता है। भैंस में 10 महीने के करीब 300 दिन होते हैं इसके गर्भकाल, और इसमें 9 महीने ही होता है।
0: 9 महीने इंसान की तरह से होता
1: जी
0: है।
1: हाँ।
0: और आपने जो 10 दिन की बात कही वो शायद इसलिए होता है, जैसे हम इंसानों के लिए होती है, हमारे घर में जो घरेलू जच्चा महिला जो है उसको भी भाई बच्चे होने के बाद तो उसे लड्डू खिलाया जाए, तो उसी तरह से अपने जानवर को भी बच्चे की तरह से ट्रीट करें और उसे भी स्पेशल डाइट दें, तो फिर वो उसका बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और आपको दूध भी
1: उत्पादन
0: बाद में अच्छा मिलेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो ये तो बात हो गई, लेकिन समय समय पर कई बीमारियां भी फैलती हैं।
1: हाँ।
0: जैसे लंपी का नाम कभी कभी बीच में आ जाता है। अगर लंपी किसी जानवर को हो गई और वो दूध भी दे रहा है तो दूध घटेगा, स्वाभाविक है। तो लंपी से बचने के लिए या दूध दे रहा है कोई पशु लगातार, तो बीमारियों से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए?
1: हाँ, बड़ी अच्छी बात है, देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जो सीजनल बीमारियाँ आती हैं और इन सीजनल बीमारियों को दूर करने के लिए हमारा विभाग पशुपालन विभाग इनमें वैक्सीनेशन टीकाकरण कार्य कराता है। तो जैसे बरसात चला गया तो बरसात के पहले हमने लगाए थे कि जो बरसात में रोग होते हैं जैसे कि गलघोंटू है और दूसरे रोग हैं, एक टंगिया है, तो इनकी हम लोग वैक्सीन जो है जो मई में ही लगा देते हैं, जिससे बरसात में वो इससे बचे रहते हैं।
0: शीत में,
1: अब शीत के समय में जो बात जैसे अभी बता रहे हैं आपकी लंपी डिसीज, तो ये लंपी डिसीज ऐसी बीमारी है एक से दूसरे पशु में फैल जाती है,
0: बड़ी संक्रामक रोग,
1: संक्रामक रोग है। तो इसके लिए वैक्सीन हमारे पास सब बिल्कुल आ चुकी है जिले में, और 5 लाख वैक्सीन है हमारे पास अभी, और जो भी चाहेगा कि पशुपालक उसको निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। और अगर वो दूर दराज है उसका पशु आने में उसको वैक्सीनेशन में, तो हमारे जो ग्रामीण लेवल के जो काम करने वाले पशु चिकित्सा वर्कर हैं वो उसको वैक्सीन देंगे। लेकिन उस किसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि इस वैक्सीन लगाने से कोई नुकसान होगा, बल्कि उस वैक्सीन को लगाने से उसको फायदा होगा, वो लंपी बीमारी से बचेगा और दुग्ध उत्पादन में उसको कतई कमी नहीं आएगी।
0: यानी कि समय समय पर दूध भले ही दे रहा है और वो ये किसान न सोचे कि भाई दूध मिल रहा है तो बीमार नहीं होगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा भविष्य के लिए।
1: हाँ,
0: भविष्य के लिए।
1: और दुधारू पशुओं के साथ तो ज्यादा ख्याल इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि दुधारू पशु जब दूध देता है तो उसमें बीमारी की संभावना बढ़ती है। जैसे कि एक बीमारी होती है थनों की, मास्टाइटिस जो छनेला कहते हैं, बहुत होता है हमारे शिवपुरी जिले में। अब उस समय किसान हमेशा परेशान होता है कि हमने ये बीमारी

0: ही आ गई, और वो बीमारी अगर लगातार 4-5 दिन तक ध्यान नहीं दी गई तो वो इतनी खतरनाक है कि दूध देना टोटल बंद कर देता है पशु, उसका थन खड़क हो जाता है और दूध नहीं देते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत बार हम बताते हैं कि देखिए मास्टाइटिस के जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि पशु जो रहता है दुधारू उसी को ये बीमारी होती है एक नंबर, और उस पशु को जिस दिन दूध उसका ऐसा लगे किसान को कि अब दूध मेरा फट रहा है एक बात, या उसमें कि थनों में सूजन है दूसरी बात, और तीसरी बात यदि ऐसा लग रहा है कि थन गर्म हो रहे हैं और इसमें जो दूध आ रहा है उसमें कहीं चिथड़े जैसे आ रहे हैं और थन बंद जैसे हो रहे हैं, तो उसको उसी दिन उसके दूसरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर यदि वो इलाज करा लेता है जो कि संभव है उस समय तक बिल्कुल इलाज हो जाएगा उसका। और अगर वो ये सोचेगा या आसपास के लोगों से पूछेगा कि होगा कुछ भी और मन से अगर दवाई करेगा तो 24 घंटे के बाद वो बीमारी और बढ़ जाएगी, एक थन से दूसरे थन में पहुंच जाएगी, और अगर और लेट हुआ तो फिर वो पूरी बीमारी ठीक होने की स्थिति में नहीं रहेगी और थन खराब हो जाएंगे, हमारा दुधारू पशु का नुकसान हो जाएगा, किसान भाई बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इसको आप ध्यान रखें कि मास्टाइटिस और जो थनैला रोग है इसका बड़ा अच्छा उपचार है हमारे पास, आप हमारे किसी डॉक्टर से जरूर मिलें और थनैला के रोग का पूरा रोकथाम करें, क्योंकि थनैला दुधारू पशुओं में ही होता है और ऐसे पशु में नहीं होता जो दूध नहीं देते।
1: ये एक बात हो गई, थनैला रोग की बात आई, लंपी की बात आई, आपने कहा कि आप पर इसका वैक्सीन है, किसान हमारे भाई आपसे संपर्क कर सकते हैं, और ये निःशुल्क है पूरी तरह से?
0: हाँ, ये पूरा निःशुल्क है, LSD जो लंपी की कोई आपको पैसा नहीं देना है।
1: और अगर कभी आपका जो सहायक टीम है आपकी और उसके गांव तक जाती है और वहां पर वैक्सीन करती है तो उस स्थिति में भी कोई पेमेंट
0: नहीं, उसको कोई पेमेंट नहीं देना है
1: उस स्थिति में?
0: नहीं, वो हमारा वर्कर है,
1: अस्पताल आए तो वहां भी नहीं,
0: लेकिन वो गवर्नमेंट का आदमी होना चाहिए, उसकी नौकरी है तो उसको पैसे नहीं लेगा, और अगर वो किसी प्राइवेट से कराता है तो उसके
1: नहीं, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
0: सरकारी संस्थाओं से जो उसको बिल्कुल निःशुल्क वैक्सीन मिलेगी,
1: निःशुल्क मिलेगी उसके घर पर भी और अस्पताल में,
0: हाँ बिल्कुल
1: दोनों जगह मिलेगी। तो डॉक्टर भगवती प्रसाद यादव जी, वर्तमान में आप उपसंचालक पशु विभाग शिवपुरी, मूलतः पशु चिकित्सा अधिकारी, दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु सलाह इस विषय पर आपने अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान जो दुधारू पशु पाल रहे हैं वो इन बातों का ख्याल रखेंगे, वैक्सीनेशन खासतौर पर लंपी के लिए वो कराएंगे, थनैला रोग से अपने जानवर को बचाएंगे तभी अधिक दूध वो पा पाएंगे। धन्यवाद आपको,
0: नमस्ते। नमस्ते सर।
1: नमस्ते।
2: भैया बनो अभी अपन जो भेंट वार्ता सुन रहे थे जी को विषय है तो दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु सलाह, जी में अपन का जानकारी दे रहे थे डॉक्टर भगवती प्रसाद यादव और जिनसे बता रहे थे भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। सो देखो अपन ने डॉक्टर साहब ने कितने भैया विस्तार से एक अच्छो बातें बताई दुधारू पशुओं के लाने अपन ने कैसे पालने हैं, इनको रख रखाव कैसे करने हैं, इनको का कछु खिलाने हैं, कब इनको टीकाकरण करवाने हैं, टीकाकरण कितने महत्वपूर्ण होते हैं, सब कछु बिनने अपन खां विस्तार से समझाओ है। हम उम्मीद करते हैं जैसे आप जरूर ध्यान रखेंगे और लाभ उठाएंगे। और भैया देखो आपके लाभ के लाने ही हम आपके लाने जी सब जानकारियां सुनवाऊ थे। और देखो भैया बहनों अपन खेती का जो भी लाभदायक बनाए जो भी हम चाहते हैं, और खेती लाभदायक बने जाके लाने जी जरूरी है कि अपन मुलक सहायक जो व्यवसाय होते हैं जो खेती के संगे संगे करे जा सकते हैं वो भी हम आप और उनके लाने जो सलाह देते हैं कि आपके लाने करना चाहिए, जैसे गाय भैंस पालन है, मुर्गी पालन है, मधुमक्खी पालन वगैरह। अब जिनमें भेड़ और बकरी पालन जी भैया ऐसो व्यवसाय है जो कम लागत में अपेक्षाकृत जो कम पूंजी होते और कम जगह में करो जा सकते हैं, यानी कि बहुत ही आसानी से जायपन कर सकते हैं। जय मारे भैया जे किसान का जे आर्थिक रूप से सुदृढ़ और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनावे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक रूप से कैसे कि भैया देखो जौन जे जानवर है जैसे जो दूध मिलाते हैं अपन ने वो बड़ो ही पौष्टिक होते हैं, तो जब अपन आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनेंगे। और देखो बकरी छोटो जानवर है जो अपन सरलता से पाल सकते हैं, जिनने भैया ज़्यादातर तो देखो दूध और मांस के लाने जो नपाई भूमिहीन और सीमांत कृषक में पालत है, पर जिनने कोनो भी पाल सकते हैं। बकरी की मेंगनी और मूत्र एक अच्छे खाद की तरह से उपयोग में लाए जा सकते हैं। अपन थे भैया बकरियन की जो किस्में होते हैं अपन बात करें इनकी तो वो है देखो गद्दी, बरबरी, जमुनापारी, सिरोही, बीटल, जखराना, सुरती, मालाबारी और भी मुलक होते हैं, पर जिनमें जो ये बरबरी और जमुनापारी होते हैं वे अपने क्षेत्र में ज़्यादा पाली जाते हैं। ऐसे भैया भेड़न से सोई अपने मनुष्य को संबंध आदिकाल से रहो है, जिनको पालन सो एक प्राचीन व्यवसाय है, जिनसे अपन ने

ऊन और मांस तो मिलते ही है, संगे भेड़ की मैंगनी सोई खाद खिलाने अच्छी उपजाऊ होते। तो जा भी अपन जैसे खाद बनाते हैं। और हाँ भैया, पालन सोई जिनको भी उतने के आसान होते हैं जितने अपनी बकरी को होते हैं। अक्सर जन पशुपालक होते हैं वे भेड़ और बकरी पालन संगे संगे करते हैं। सो भैया देखो, भेड़ बकरी पालन के लाने केंद्र और राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुदान आदि सोई दिए जाते हैं। कुल मिला के अगर भैया सही प्रशिक्षण और दिशा निर्देश के संगे जाए करो जाए तो जो एक अच्छा लाभकारी व्यवसाय बन सकते हैं। सो आप सोई जी से जरूर लाभ उठाओ, ऐसी भैया हमारी इच्छा है, हमारी मंशा है। और हम जो चाहते हैं कि आप ना केवल खुद लाभ उठाओ बल्कि लोगन का जे सोई जाके लाने प्रेरणा दो, प्रेरित करो। तो भैया देखो, अब हम का सोच रहे हैं कि आपको मनोरंजन के लाने एक और लोकगीत सुनाए। सो देखो, आज हम जो एक और लोकगीत लाए भए हैं, जाए गा रही हैं बीना शर्मा और बिनकी सखियाँ। सो चलो अपन सुनाते हैं।

और भैया बहनों देखो, जय लोकगीत के संगे हो चली हमारी चलवे की बेरा। तो चलो चलो बताते हैं आज के मौसम के बारे में। तो आज अपैते को न्यूनतम तापमान रहो 28 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहो 37 डिग्री सेल्सियस, हवा की गति रही 11 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा में नमी यानी आर्द्रता रही 47%। और देखो भैया, जय कहेंगे हम मौसम को, तो देखो अपन देख ही रहे कि अब जैसे मौसम है, अब बरसात के दिन आ रहे हैं, बरसात के दिन चल रहे हैं, और जैसे बारिश होगी तो मच्छर बढ़ाते हैं, मक्खी बढ़ाते हैं। तो अपनों अपने बच्चन को, स्वास्थ्य को पूरा पूरा अपन का ध्यान रखने हैं। कैसे कि भैया अगर अपन ध्यान रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे तभी भैया अपन सुरक्षित रहेंगे। और देखो जय के संगे ले रहे थे कार्यक्रम चौपाल से विदा, आप सबन के लाने चंदा बहन की राम राम, जय जवान जय

0: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा, समुद्री सुरक्षा और सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग

0: दे रहे हैं विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स की 3 दिन की यात्रा आज समाप्त हुई और प्रधानमंत्री आज दोपहर स्वदेश लौटे और ये यात्रा महत्वपूर्ण इस तरह से थी कि सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया गया था और इसके अलावा भारत और सेशेल्स के राजनयिक संबंधों का ये 50वां वर्ष भी रहा। आज हम इस विषय पर विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं विदेश मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो सबसे पहले हम इसी सवाल से इस चर्चा को शुरू करते हैं कि जिस तरह से भारत ग्लोबल साउथ की एक आवाज बनकर उभरा है और विकास के सहयोगी के तौर पर भारत एक बहुत बड़ा देश बनकर उभरा है, सेशेल्स की यात्रा में आपको इस संबंध में क्या नजर आया?
2: देखिए, भारत और सेशेल्स के बीच में संबंध पिछले 50 सालों में हमने देखा है कि वो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर नहीं है, उनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण आयाम ये है कि भारत सेशेल्स के लिए चाहता है कि वो हिंद महासागर में और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, चाहे वो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हो या आर्थिक सुरक्षा संपन्नता को लेकर हो, सामुद्रिक सुरक्षा हो, इन तमाम आयामों पर सेशेल्स ऐसी स्थिति में रहे कि वो न सिर्फ अपने ऊपर आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके बल्कि क्षेत्र में भी, हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी वो इन चुनौतियों का सामना करने में एक सकारात्मक भूमिका निभा सके। तो मल्टीलैटरल एस्पेक्ट में भारत की कोशिश रही है कि सेशेल्स एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर की भूमिका निभाए, तो ये दूसरा उसमें आयाम है। तीसरी एक चीज है कि भारत ने हमेशा ये कोशिश की है, जैसा कि हम जानते हैं कि महासागर नीति जो पहले सागर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसका आगाज पहले किया था, अब वो महासागर नीति में, उसमें भी हम देखते हैं कि महासागर नीति के तहत उद्देश्य ये है कि जो छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं, छोटे जो हिंद महासागर के और बड़े पैमाने पे अगर हम कहें कि ग्लोबल साउथ के जो छोटे द्वीपीय देश हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनकी जरूरतें जो है, जनता की जो आवश्यकताएं हैं, इन देशों की जो आकांक्षाएं और उनकी जो चिंताएं हैं, उनको दूर करना और उनको एक हाशिए से उठा करके उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ये भारत की नीति रही है। तो भारत और सेशेल्स के संबंधों में ये साफ तौर पर दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया कि हम साथ चलते हुए हम अपने संबंधों में भरोसे और भरोसे के साथ सहयोग और सहयोग से आज हम जन कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं, ये हमें प्रधानमंत्री की विजिट में भी दिखता है और भारत सेशेल्स के संबंधों में भी दिखता है। क्योंकि बड़े पैमाने पर भारत के जो भी, अगर हम लिस्ट ऑफ MOUs को देख लें या पिछले तमाम वर्षों में भारत ने जो सहयोग सेशेल्स के लिए किया, वो सेशेल्स की जरूरतों पर केंद्रित रहा है। और ऐसा वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक ने भी कहा कि भारत सेशेल्स संबंध सेशेल्स की जरूरतों को ध्यान में रखे गए हैं, और यही मुझे लगता है इस द्विपक्षीय संबंध की बड़ी खास बात है।
1: तो कैसे आप देखते हैं किस तरह से भारत सेशेल्स के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और जिस तरह से सहयोग भारत ने रखा है वो कैसे मदद करेगा दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में?
2: MOUs की जहां तक बात है उसमें क्षमता को बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग, सारे MOUs में कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सेशेल्स के सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो भारत के सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन अफेयर्स में, या फिर वो ICAR और सेशेल्स की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके बीच में सहयोग हो, तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ा आयाम है इन संबंधों का। साथ ही साथ जैसा कि हमने पहले भी देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेशेल्स के लिए एक बड़ी जरूरत है, तो वहां पर तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भारत ने काम किया है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार मुझे लगता है किसी देश के साथ संबंधों में जन कल्याण की बात कही,
1: बिल्कुल,
2: और वो इसलिए है कि सेशेल्स के लिए ना सिर्फ एक नया सेशेल्स नेशनल हॉस्पिटल बनेगा इस MOU के तहत, बल्कि वो तमाम जेनरिक दवाएं और मेडिसिनल सप्लाईज जो है वो जन औषधि स्कीम के तहत सेशेल्स को दी जाएंगी। तो एक तरह से हमें दिख रहा है इन MOU के तहत कि बड़ा ही समेकित एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग और एग्रीमेंट्स का इन दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। जहां तक लाइन ऑफ क्रेडिट का सवाल है, उसमें भी एक बहुत, जो 175 मिलियन की बात तमाम बार दोनों देशों के नीति निर्धारकों के बीच में बातचीत में भी आई और मीडिया में भी तमाम ये खबरें आई, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट है जिसमें 125 मिलियन तो लाइन ऑफ क्रेडिट है, 50 मिलियन ग्रांट के तौर पर दिया जा रहा है। तो सेशल्स की जो आर्थिक क्षमता है उसको भी ध्यान में रखते हुए
1: जी,
2: इन एग्रीमेंट को ये

0: दिया गया है जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखिए, सेशल्स एक ऐसा देश है, छोटा सा देश है जिसकी तटरेखा बहुत बड़ी है, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की उनकी तटरेखा है। तो उसके लिए स्पेस सैटेलाइट एप्लीकेशंस और कैपेसिटी बिल्डिंग उस क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में, सैटेलाइट इमेजरी के क्षेत्र में, ये मुझे लगता है कि सेशल्स की क्षमताओं को एक बड़े नए स्तर पर पहुंचाएगा, जिससे सेशल्स हिंद महासागर में भी जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की जो चिंताएं हैं, चाहे वो पायरेसी को लेकर हो या ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्कोटिक्स को लेकर हो या गन रनिंग को लेकर हो, उनमें भी सेशल्स की क्षमता बढ़ेगी तो हिंद महासागर में मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ेगी, जो दोनों ही देशों के लिए और क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा।
1: आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और सेशल्स के संबंधों और समुद्री सुरक्षा के बारे में क्या कहा।
2: अवर कोऑपरेशन इन मैरिटाइम सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, हाइड्रोग्राफी एंड मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस रिफ्लेक्ट आवर शेयर्ड कमिटमेंट टू ए सेफर एंड मोर सिक्योर रीजन। आई मेट प्रेसिडेंट अल्बेनी तोपाथ दिस मॉर्निंग। आवर विजन इज कैप्चर्ड इन द आइडिया ऑफ महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी and growth across regions Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent, and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
1: तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संबंधों को दूसरे देशों के साथ मजबूत करना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और सेशल्स जैसे देश इसमें कितनी बड़ी एक साझेदारी की भूमिका निभा सकते हैं?
0: देखिए, भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्र में, खासतौर से हिंद महासागर के क्षेत्र में, भारत की रणनीति सबसे पहले तो ये है कि दुनिया की तमाम महाशक्तियों के इतर भारत ये चाहता है कि इस क्षेत्र में सभी देश, सभी मित्र देश एक अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं, उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाए और सभी मिलकर कॉमन सिक्योरिटी पर काम करें, कोऑपरेटिव पीस के उद्देश्य पर काम करें, जिससे कि ये क्षेत्र न सिर्फ स्थिर रहे बल्कि शांति भी इस क्षेत्र में बनी रहे। इसलिए मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस इस लिहाज से बहुत जरूरी है, और महासागर के कॉन्सेप्ट में सेशल्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उतनी ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है जितनी की मॉरिशस या मालदीव्स या श्रीलंका की है। तो इस लिहाज से महासागर नीति के तहत भारत का जो उद्देश्य है, भारत का जो लॉन्ग टर्म विजन है कि सभी का विकास हो, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, तो ये सारी चीजें इस नीति में हमें दिखती हैं। महासागर के लॉन्च होने के बाद 2025 में, सागर नीति को 2015 में लाया गया था, 2025 में उसे अपग्रेड करके महासागर नीति का रूप दिया गया। तो पिछले एक साल में हमने देखा कि तमाम जो हिंद महासागर के छोटे द्वीपीय देश हैं उनके साथ सहयोग में इस बात को बड़ी मुखर तौर पर कहा जा रहा है कि सभी देशों की क्षमताओं को एक साथ जोड़कर हिंद महासागर के क्षेत्र में हमें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी दोनों ही एस्पेक्ट्स में काम करना है। तो मुझे लगता है कि भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि एक इंक्लूसिव, रूल्स बेस्ड, पीसफुल और स्टेबल ऑर्डर हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बने।
1: जी, सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों को अपने संबोधन में रेखांकित भी किया था, तो उस संबोधन से भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और बातों को आप हमारे श्रोताओं के समक्ष रखना चाहेंगे?
0: देखिए, एक खास पहलू भारत और सेशल्स के संबंधों में वहां पर मौजूद भारतीयों और भारतवर्षियों का योगदान है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतीय जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, एनआरआईज हैं, और जो हमारा डायस्पोरा है वहां पर, वो 8-10% की संख्या वहां पर टोटल पॉपुलेशन में देता है, और उनका योगदान बहुत प्रमुख है। पहले तो वो 1770 में जब पहली बार भारतीय सेशल्स पहुंचे तो वो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे, वो खेतों में और इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए गए थे। लेकिन आज भारतीयों का कॉन्ट्रीब्यूशन, और मैं डायस्पोरा के साथ साथ एनआरआईज को भी जोड़ूंगा, वहां सेशल्स में एडवांस जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग के सेक्टर्स हो, सिविल इंजीनियर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे हुए हैं, या वहां के सिविल सर्वेंट्स, इन तमाम क्षेत्रों में भारतीयों का योगदान बहुत प्रमुख है। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेखांकित किया। साथ ही साथ जो भरोसे की नींव पर आधारित जो ये संबंध है, इसमें ये जो तमाम एस्पेक्ट्स आते हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है खाद्य सुरक्षा का, जो सेशल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमेशा से भारत से चावल सेशल्स को जो है वो भेजा जाता है, कभी कभी वो एक्सपोर्ट के तौर पर, बहुत ऐसे भी ओकेजंस आए हैं जब भारत ने चावल सिर्फ जो है वो सहायता के लिए भेजा। सेशल्स जैसे देश आज जलवायु परिवर्तन और बहुत तेजी से बदलती हुई ये जो क्लाइमेट डिबेट है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उससे जूझ रहे हैं। उनकी इन तमाम जो जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट रिलेटेड कैलामिटीज हैं, उनसे लड़ने में भारत क्या योगदान दे सकता है।

0: दोनों देश मिलकर क्या काम कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी कहा कि 50 साल का सफर हमने तय कर लिया है, अब आगे आने वाले 50 सालों में हमें क्या करना है। तो मुझे लगता है कि सेशल्स को लेकर एक बहुत दूरगामी नीति बनाने की बात उन्होंने कही, और इसमें सेशल्स के नीति निर्धारकों का, सेशल्स की जनता का और सेशल्स में रह रहे भारतवर्षियों का भी योगदान उन्होंने मांगा। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ा ही व्यापक और इंक्लूसिव एजेंडा उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे सेशल्स की जनता और वहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और राष्ट्रपति ने बड़े खुले मन से स्वीकार किया।
1: जी, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, सेशल्स की अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो इन देशों में जो अपने रणनीतिक संबंधों में भारत विकास का जो एक क्षेत्र लाया है और सहयोग और जनकल्याणकारी जो साझेदारी है इस क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहा है, वो कैसे भारत अपने एक सकारात्मक प्रभाव को इन देशों के साथ प्रस्तुत कर रहा है और कैसे विश्व में ये एक संदेश भी जा रहा है कि भारत अपने सहयोगियों के साथ एक विकास का प्रबल सहयोगी बनकर उभर रहा है।
0: जी, जैसे मैंने पहले कहा कि भारत की महासागर नीति 2025 की, उसमें बहुत स्पष्ट है कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, खास तौर से ये हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश हैं, उनके साथ सहयोग में एक बड़ा स्तंभ ये होना चाहिए कि इन देशों की, जिनकी बात दुनिया के किसी भी स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या दुनिया के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर, उनकी कॉप की जो मीटिंग्स हैं उन पर, इन छोटे देशों की बात सुनी नहीं जा रही। तो इसलिए ग्लोबल साउथ की आज सबसे मुखर और सबसे सशक्त आवाज बनकर भारत उभर रहा है, जो इन देशों की जनता की जो सर्वाइवल से जुड़े इश्यूज है, कृषि है, खाद्य सुरक्षा है, फिशरीज का सेक्टर है, मछली पालन का, क्योंकि इलीगल और अंडर रिपोर्टेड फिशिंग को लेकर के, IEUU जिसे कहते हैं, उसको लेकर के चिंताएं बहुत सारी है। तमाम जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आती हैं, उनमें भारत हमेशा से हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। तो इस बात को भी ग्लोबल साउथ के संदर्भ में भारत ने रखा है। भारत को जैसा कि हम जानते हैं दुनिया की फार्मेसी समझा जाता है, लेकिन आज सिर्फ अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है कि जनता, जो जन औषधि योजना जो भारत में लागू हुई, ये दुनिया के तमाम जो विकासशील देश हैं, ग्लोबल साउथ के सदस्य हैं, जिन्हें दुनिया के अग्रणी जो विकसित देश हैं उनसे कोई चिकित्सा से संबंधित या हॉस्पिटल से संबंधित, दवाओं से संबंधित, नई टेक्नोलॉजी से संबंधित जो समर्थन, जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आज भारत उसको मुहैया कराने की स्थिति में है। तो इसलिए ग्लोबल साउथ को लेकर के भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि इन तमाम देशों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है, तभी ग्लोबल साउथ एक ऐसे स्तर पर, ऐसे मुकाम पे पहुंचेगा जहां वो अपनी बात
1: जी
0: को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कह सके, ना कि सिर्फ जो अभी तक हमने ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ की डिबेट सुनी है, उसमें हमेशा ये होता है कि ग्लोबल साउथ के देश कहते हैं कि हमें और फंडिंग दी जाए, हमें ग्रांट्स दी जाए, हमें एड दी जाए। आज भारत अपने इन तमाम ग्लोबल साउथ के देशों की मदद के साथ ये कहना चाहता है, ये करना चाहता है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ एक ऐसे, इस तरह से एक दूसरे को एंगेज करें कि ये वन वे डोनर और रेसिपिएंट रिलेशनशिप से बदले, और साउथ अपनी बात को, अपने मुद्दों को कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादा असर्टिवली कह सके, और इसके
1: बिल्कुल
0: लिए इनकी कैपेसिटीज को बढ़ाना जरूरी है। यही अफ्रीका के देशों में दिख रहा है, यही पैसिफिक आइलैंड के जो
1: जी जी
0: तमाम जो छोटे देश हैं, और हिंद महासागर में भी यही बात दिख रही है।
1: बिल्कुल। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, बहुत धन्यवाद। भारत और सेशल्स के संबंधों पर आपने विस्तार से विश्लेषण रखा और निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ इन संबंधों को लेकर जानकारी प्राप्त हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा, समुद्री सुरक्षा और सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए एक बार फिर हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत लेकर। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं हीरा पन्ना फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्श।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म लव स्टोरी से। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ है, बोल हैं आनंद बख्शी के और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, बोल है हजरत जयपुरी के, और फिल्म का नाम लव इन टोक्यो।

आप सुन रहे थे एसपी बालसुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ में लव फिल्म का गीत। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और संगीत से सजाया था आनंद मिलन ने।

आपके रेडियो सेट पर आ रहा है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का गीत, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में, जावेद अख्तर की बोल है और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर्पण।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट।

0: और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का

0: जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: एप्लीकेशन लॉन्च इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
1: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है, जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2-पहिया, 3-पहिया, 4-पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
6: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of

0: ग्राहक हो सकता हो, उन्हें एहतियाती तौर पर ज्यादा से ज्यादा 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। हुकूमत के मुताबिक इस कानून का मकसद समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों पर काबू पाना, उन्हें सख्त सजा देना और उनकी साजिशी मनसूबाबंदी को नाकाम बनाना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान की हुकूमत ने आज नई दिल्ली में जमुना आबी प्रोजेक्ट की तामीर और उस पर अमल दरामद के लिए एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर बात करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस मफाहमत नामे से हरियाणा और राजस्थान के लोगों को तकरीबन 3 दहाइयों से दरपेश पानी के मसले का हल हो गया है। उन्होंने कहा कि ये मुआहिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उसूल मुजाकिरात के जरिए हल की एक बेहतरीन मिसाल है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस मुआहिदे के तहत अगले माह से अक्टूबर तक 3 जेर-ए-जमीन पाइपलाइंस के जरिए यमुना कनाल से राजस्थान को तकरीबन 580 मिलियन क्यूबिक पानी मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पाइपलाइन से दोनों रियासतों के आवाम को पीने का पानी मुहैया हो सकेगा। इस दौरान जल शक्ति के वजीर सीआर पाटिल ने कहा कि इस मुआहिदे के तहत मानसून के मौसम में राजस्थान के हिस्से का पानी हथनी कुंड बैराज से वेस्टर्न यमुना कनाल के निजाम के रास्ते बिछाई गई जेरे जमीन पाइपलाइन के जरिए फराहम किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू सीकर झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: दिल्ली काबीना ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होने वाले 4 साल मरहलेवार रोल आउट के लिए मुकर्रर कसीर जैती फ्रेमवर्क 31 मार्च 2030 तक कौमी दारुल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर कार्बन के सिफर इखराज की तरफ मुंतकिल करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बड़े मालियाती अखराज का अहद करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक तहकीक और तरक्याती प्रोजेक्टों की कारकर्दगी, जवाबदेही और बरवक्त अमलावरी के लिए DRDO DFP 2026 को मालियाती इख्तियारात का एक वफ़ जारी किया। इस मौके पर जनाब सिंह ने कहा कि DFP 2026 दिफाई अफवाज में तहकीक और तरक्की के इको निज़ाम से निकलने वाले निज़ाम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी की तेज तर पैदावार और शमूलियत में सहूलत फराहम करेगा। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि हुकूमत ने बुनियादी, सानवी और तीसरे दर्जे के तिब्बी सहूलती मराकज में तौसी करके मुल्क के सेहत निजाम को नुमाया तौर पर मजबूत किया है। नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी कौंसिल की 16वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि शहरियों और सेहत निजाम के दरमियान राबते के पहले मरकज के तौर पर मुल्क भर में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कायम किए जा चुके हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल बरतानिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद यूनान के एथेंस में एक आला सतही भारतीय कारोबारी वफ्द की क्यादत कर रहे हैं। जनाब गोयल ने आज यूनान के तरक्यात के वजीर टाकिस थियोडोरी काकोस से मुलाकात की। जनाब गोयल ने कहा कि उन्होंने वसी तर तिजारत, सरमायाकारी, सनती तावुन और लचकदार सप्लाई चेन्स के जरिए भारत यूनान इक्तिसादी शराकतदारी को मजबूत करने पर तबादले ख्याल किया। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर फौजी हमले को आर्जी तौर पर रोकने और आबनाए हुरमुस से तिजारती बहरी जहाजों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुजाकिरात का एक नया दौर कल कतर की राजधानी दोहा में होगा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान ने मीटिंग की दरख्वास्त की थी और ये मीटिंग दोहा में होगी, ताहम उन्होंने मुजाकिरात के एजेंडे या दोनों ममालिक की नुमाइंदगी की सतह के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। ऑपरेशन एमिस्टेड के तहत जलजले के मुतासिर वेनेजुएला में तैनात भारतीय फौज का फील्ड अस्पताल मुकम्मल तौर पर फाल हो गया है।

ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त तिब्बी खिदमत फराहम कर रहा है। वेनेजुएला में भारतीय सिफारतखाने ने कहा कि तजुर्बेकार डॉक्टरों पर मुश्तमिल भारतीय तिब्बी टीम ने कराकस में इंटरनेशनल ला रिंकोना डा रेस्ट्रिक पर एक कैंप कायम किया है। उसने कहा कि मेडिकल कैंप अब मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है और खिदमत 24 घंटे खुली रहती हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरला और माहे में कल शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले दो रोज के दौरान उड़ीसा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली टीमों में शामिल हो गई है। ताहम मर्दों की टीम को बराह रास्त क्वालिफाई करने के लिए रवा साल के अख्ताम तक ICC की मर्दों की T20 की रैंकिंग में एशिया की सबसे आला दर्जे की टीम बनना होगा। बैन अलावा क्रिकेट काउंसिल ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत ऑस्ट्रेलिया बरतानिया और जुनूबी अफ्रीका ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों में खवातीन T20 मुकाबलों में अपनी जगह यकीनी बना ली है। US ओपन बैडमिंटन में भारतीय सरकर्दा खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में चीनी ताइपे के सूली यांग से हार गए और उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। इस हार में BWF के खिताब के लिए श्रीकांत के इंतजार को और बढ़ा दिया है क्योंकि उन्होंने 2017 में BWF सुपर सीरीज के दौरान फ्रेंच ओपन में अपना आखिरी बैन अलावामी खिताब जीता था। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब में बहादुरी के एजाजात अदा किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकत दारी अब जिद्दत तराजी पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए हैं। मरकजी काबीना ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी लाने की खातिर सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी है। मगरबी बंगाल असेंबली ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए अवामी तहफ्फुज और समाज मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों जैली हिमालयी बंगाल बिहार महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम भारत विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।

0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और एमएसएमई क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
0: प्रियंका जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं, ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
1: जी।
0: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई की है वो, जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एमएसएमईज के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
1: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: जी नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
1: जी।
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे, एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए
1: जी।
0: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था, अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं, वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है, तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं
1: जी।
0: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने
1: दी है।
0: और 2023 में एडिशनल 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें देनी थी और 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था हमने 3.5 साल में ही 10,00,000 करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं। तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत

0: बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल
1: जी
0: एंटरप्राइजेज हैं उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण
1: उपलब्ध हो
0: प्राप्त
1: जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा
0: जी।
1: कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE, उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता है।
0: इसमें दो बातें मैं और बताना चाहूंगा। पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो आरबीआई की लिमिट थी वो 10 लाख रुपए थी, तो हमने आरबीआई से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं, इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है। तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं।
1: जी, बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी हैं, लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है तो वो आम आदमी की होती है, जो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो ग्रांट कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
1: जी।
0: तो आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं। पहला, ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है, और ये हमारे एक्ट के तहत, MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात ये है कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
0: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपए है, और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है, तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS, जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं, तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में
1: पता
0: नहीं होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं। तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं, और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी MSME एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया CGTMSE का जरूर हवाला दें, ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा
1: जी आप बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो CGTMSE जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहाँ तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी, सरकार की ओर से तैयार की गई, क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है, जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं, तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?

0: पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं, इनको जेम से करना है। ये हमारे GFR के अंदर ये चीज निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है। तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, वो जेम का फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें, पिछले 5 साल में संख्या MSMEs की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी है। और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों को, उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ है।
1: जी, हम चर्चा जारी रखते हैं। पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला, हिमाचल प्रदेश।
1: जी
2: जी मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है MSME के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो कितने परसेंट में ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
1: जी
0: देखिए, जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं। RBI की गाइडलाइंस हैं, बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है, वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं, और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं, तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफी कम रहती है। ये एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8 से लेकर 10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है, तो ये आप हमारे CGTMSE का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप प्रोसेसिंग में हैं, तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा।
1: मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
3: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
3: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान।
1: जी
3: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न है कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और ये पूछना चाहता हूँ कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए, तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू।
0: राशिद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये तीन श्रेणियां हैं MSME में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें, तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है, वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है, और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगा कि ये डेफिनेशन MSME की हमने पिछले साल रिवाइज की थी, और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया। और इसका पर्पज ये है कि बहुत से हमारे MSME इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी, या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे, तो हम MSME का स्टेटस खो देंगे, और ये जो बेनिफिट MSME के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा।
1: जी हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन जी।
4: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार
4: मैम, मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग हैं जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं? क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं, सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
0: देखिए, आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूँगा। शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
1: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस तरह से?
0: जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूँगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 MSMEs हमारे साथ पंजीकृत थे। और ऐसे बहुत से MSMEs थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, MSME एसोसिएशंस के साथ। आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ये हम मानते हैं कि एमएसएमई जो है वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट है, और काफी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज थ्रू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया है कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है, तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए 0 स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है, तो वो एसएमए 1 स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया, तो वो एसएमए 2 स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया जाता है।
1: और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे, तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफी मजबूत रही है, और उसका एक रीजन ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है वो भी काफी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो है वो क्लीन चले। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं, तो उसमें आपको सहायता दी जाती है।
1: हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
5: जी मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
5: और जो एक्सपर्ट साहब हैं इनका भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
5: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होते हैं नए, और इनमें जो लोग काम करते हैं, तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेजेस इनमें एमएसएमई में कितनी निर्धारित करी गई है जी? और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए, किसके जो मजदूर काम करते हैं उनमें मतलब नून को और वेलफेयर स्कीम्स का सकती हैं?
0: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है, तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं, वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड।

0: वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी
1: ये
0: होती
1: होते
0: हैं।
1: रहते
0: तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड हैं आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनके अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग की एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं 20 लोग हैं तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो हैं वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, कोई हेल्पलाइन नंबर है जहां?
0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमने ये देखा, मंत्रालय के पास हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे
1: जी
0: रूप में आपसे साझा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी, और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशंस की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफी स्टेट्स ने
1: जी
0: अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
1: जी हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से रमा शंकर वाजपेयी जी। जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, सवाल पूछें।
2: की जो लघु उद्योग ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन्न हो चुके हैं। अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
0: जो आपने प्रश्न पूछा है मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफी संख्या इसकी बढ़ी है, 1 करोड़ 65 लाख से अब 8 करोड़ 70 लाख से ऊपर हुए हैं। और हमारे MSMEs जो हैं वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने, और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि MSMEs की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं।
1: जी
0: अभी जो हमने मेंशन किया अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है ट्रेड्स, जो कि RBI रेगुलेटेड है। तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है।
1: जी
0: और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा
1: जी
0: हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1800 1806763 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी,
3: हेलो।
1: जी हाँ, अपना सवाल पूछें।
3: हाँ नमस्ते मैडम।
1: जी
3: हेलो।
1: जी हम सुन पा रहे हैं, जल्दी से सवाल।
3: अच्छा, एक्चुअली हमारा ना बुटीक है
1: जी।
3: सिलाई का, तो उसमें हमारे पास 2 कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है? फ्लैट्स घर का है मतलब।
0: बिल्कुल, आपको लोन मिल सकता है, और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
1: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि MSME को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
0: जी बिल्कुल, MSME को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे MSMEs को मिलता है। और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सके, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये दो एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनी, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके क्या फायदे हैं, रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
0: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप MSME में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इंप्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था। ये पोर्टल फुल्ली वॉलंटरी है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी API बैकिंग है, जिसके अंदर हम GST, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है। इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं।
1: जाते जाते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था। 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था। 2.5 साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं। 17 लाख लोगों को ₹15,000 का टूल किट प्राप्त हो चुका है। 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी,
1: तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं MSME। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा।
1: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित सुधीर पांडे का एकल तबला वादन। पंडित सुधीर पांडे का नाम देश के अग्रिम पंक्ति के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों में लिया जाता है। आपने तबले की शिक्षा अपने पिता सहगुरु स्वर्गीय पंडित अर्जुन पांडे और दादा गुरु पंडित भागवत सिंह जी से बनारस दिल्ली और अजराड़ा घरानों में प्राप्त की। तीनों घरानों का खूबसूरत गुलदस्ता सजाकर एक नई शैली गुरु द्वारा प्रदान की गई, जिसे लडंत का बाज नाम दिया गया। आप इस शैली के प्रमुख प्रतिनिधि वादक हैं। दाएं बाएं की सघन भूमिका, बोलों की शुद्धता, रचनाओं में लय का सुंदर विन्यास, प्रयोग धर्मिता और विरासत में मिले पुराने दुर्लभ बोलों की पांडित्यपूर्ण प्रस्तुति आपके वादन में सहज रूप से मिलती है।
2: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ तबला रिसाइटल बाय पंडित सुधीर पांडे। पंडित सुधीर पांडे इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट तबला वर्चुओसो। ही रिसीव्ड हिज रिगरस ट्रेनिंग फ्रॉम हिज रेवर्ड फादर एंड गुरु लेट

Takada,

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यही संपन्न होती है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard ताल तीन ताल played on tabla by Sudhir Pandey. He was accompanied on sarangi by Ghanshyam Sisodia. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री एन एस कल्याण रामन द्वारा मृदंगम पर लय विन्यासम।
3: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी प्रेजेंट लय विन्यासम ऑन मृदंगम बाय श्री एन एस कल्याण रामन।
2: पारंपरिक संगीत परिवार में जन्मे श्री एन एस कल्याण रामन आंध्र प्रदेश के सुप्रसिद्ध मृदंग वादक है। उन्होंने बाल्यावस्था से ही मृदंग वादन पर गहरी रुचि दिखाई और अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री एम के आर प्रसाद से प्राप्त किया। बाद में उन्होंने विख्यात मृदंग विद्वान श्री दंडमुड़ि राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन इज अ रेनाउंड मृदंगम आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश बिलोंगिंग टू अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल फैमिली। He showed keen interest in mridangam from a very young age and received his initial training under Sri M.K.R. Prasad. He later underwent advanced training under the renowned gurus Sri Dandamodi Ramohan Rao and Sri K. Veerabhadra Rao.
2: Sri N.S. Kalyana Raman ne Dr. M. Balamurali Krishna, Sri T.V. Sankar Narayan, Sri T.N. Seshagopalan, Hyderabad Brothers aur Hyderabad Sisters jaise anek prakhyat sangeetajnyon ke saath sangat kiya. Unhone desh ke अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक अकादमी में कई प्रदर्शन दिया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन हैज अकंपनीड सेवरल एमिनेंट म्यूजिशियंस इंक्लूडिंग डॉक्टर एम बालमुरली कृष्णा, श्री टी वी शंकर नारायण, श्री टी एन शेषगोपालन, हैदराबाद सिस्टर्स एंड हैदराबाद ब्रदर्स। ही हैज परफॉर्म्ड इन प्रेस्टिजियस सभास अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग मद्रास म्यूजिक अकादमी।
2: श्री एन एस कल्याण रामन आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार रहा। आपने चेन्नई और विजयवाड़ा आकाशवाणी केंद्र में 36 वर्ष की विशिष्ट सेवा प्रदान किया। आपने

0: आकाशवाणी और दूरदर्शन के कई राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। आप कंची कामकोटि पीठम का आस्थान विद्वान रहा और आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
1: He is a top-grade artist of Akashvani and has also participated in national programs of music and Doordarshan programs. He rendered 36 years of distinguished service to Akashvani at Chennai and Vijayawada. He was honored as Asthana Vidwan of Kanchi Kamakoti Peetam and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
0: आजके कार्यक्रम में श्री एनएस कल्याणरामन मृदंगम पर अपने लय विन्यास का प्रारंभ मिश्र जाति झंपे ताल के साथ कर रहा है।
1: Tonight, श्री एनएस कल्याणरामन begins his लय विन्यासम on मृदंगम with मिश्र जाति झंपे तालम।

0: आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ़ ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम

बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।